नमस्कार अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 4 अक्टूबर 2026 दिन रविवार, अश्विन कृष्ण पक्ष नवमी 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्योदय होगा 6:18 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:05 पर। और प्यारे श्रोताओं, आज के दिन विश्व पशु दिवस भी मनाया जा रहा है।

एक तरफ विकास की ऊंचाइयां हैं तो दूसरी तरफ पिछड़ेपन की। इस तरह से इंसान का चरित्र जानवरों से भी नीचे दर्जे वाला बन गया है। महापुरुष समझते हैं कि तू इंसानी चाल तो चल ले, फिर तेरे आगे बढ़ना, विकास करना

योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा करें।
1: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
2: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਥਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਤਸਤਾ ਅਮ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਥਾਰੇ ਸਾਥ ਥਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਸਖੀ ਨੇਹਾ ਦਾਕੜ, ਅਰਥਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂੰ ਹੂੰ ਆਜ ਕੇ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਮਾ। ਮਾਰਾ ਆਜ ਕਾ ਕਾਰਯਕ੍ਰਮ ਆ ਆਓ ਗਾਮ ਚਲੇ। ਆਜ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗੰਮਾ ਮਾ ਆਜ ਕੇ ਮੋਡਰਨ ਟਾਈਮ ਕੀ, ਵੀ ਮੋਡਰਨ ਟਾਈਮ ਮਾ ਕਿਤਨੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਘਰ ਕੇ ਕਾਮ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮਾਰ ਸਿਟੀਆਂ ਮਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋਬ ਕਰਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਜ ਕੇ ਗਾਮਾ ਮਾ ਕਿਤਨੀ ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮਾ ਔਰ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਜਾਣਨੇ ਵਾਸਤਾ ਆਜ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਮ ਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ। ਮਾਰੇ ਸਾਥ ਜੁੜ ਰਹੀ ਆ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ, ਅਨੂ ਔਰ ਕਿਰਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾ ਟੀਚਰ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਨਕੇ ਜੀਵਨ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਉਨਕੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮੀਨ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲਏਂਗੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।
1: ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।
0: ਤੋ ਅਮ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨੂ ਦੇਵੀ ਤੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਭਾਬੀ।
2: ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।
0: ਔਰ ਭਾਬੀ ਠੀਕ ਠਾਕ?
2: ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ।
0: ਤੋ ਭਾਬੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਹਾਂ ਤੇ ਕਰੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਹਾਂ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ।
2: ਮੈਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਕੀ ਲੜਕੀ ਹੂੰ ਜੀ। ਮੈਨੇ JBT ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, MA ਹਿੰਦੀ ਸੇ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਕਾਲਜ ਸੇ ਮੇਰੀ JBT ਹੈ ਜੀ।
0: ਠੀਕ ਬਾਤ ਭਾਬੀ। ਤੋ ਦੂਸਰੀ ਭਾਬੀ ਮਾਰੇ ਸਾਥ ਜੁੜ ਰਹੀ ਕਿਰਨ ਦੇਵੀ, ਇਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਭਾਬੀ।
3: ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਰਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪੁਲੇ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਇਕ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਨੇ BEd MA BEd ਹੂੰ ਮੈਂ। ਤੋ ਮੈਨੇ BEd SRM ਕਾਲਜ ਸੇ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
0: ਠੀਕ ਬਾਤ ਭਾਬੀ। ਮਾਰੇ ਸਾਥ ਜੁੜ ਰਹੀ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ, ਤੋ ਅਮ ਇਨ ਤੇ ਬਿਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਏਂਗੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਭਾਬੀ।
4: ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਕੀ ਲੜਕੀ ਹੂੰ ਔਰ ਫਤਿਹਪੁਰ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ DLED ਔਰ MA ਹੂੰ। DLED ਮੈਨੇ ਜਗਾਦਰੀ ਕਾਲਜ ਸੇ ਕੀ ਹੈ।
0: ਠੀਕ ਬਾਤ ਭਾਬੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਥਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗੀ ਔਰ ਥਾਰੇ ਜੀਵਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸਾ ਪੁੱਛੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੋ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂ ਅਨੂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਜੋ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾ, ਤੋ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਕਰਨੀ?
2: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇ ਬਾਤ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਹੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੇ ਕਿਸੀ ਔਰ ਕੋ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੇ ਜੋਬ ਕਰਨੇ ਕੀ ਸੋਚੀ।
0: ਠੀਕ ਬਾਤ ਭਾਬੀ। ਤੋ ਭਾਬੀ ਆਪ ਕਿਰਨ ਭਾਬੀ ਆਪ ਬਤਾਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋਬ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚੀ?
3: ਕਿਉਂਕਿ ਵਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵੂਮੈਨ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਹਮ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤੋ ਹਮੇ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਏ ਐਸੇ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਹੈ ਹਮਨੇ ਇਤਨੀ ਤੋ ਉਸਕਾ ਤੋ ਲੋਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਨੀ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕੀ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤੋ ਹਮੇ ਮਤਲਬ ਉਸਕਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ।
0: ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਬਾਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਭਾਬੀ ਆਪਕੀ। ਤੋ ਪੂਜਾ ਭਾਬੀ ਆਪ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਤਾਓ ਵੀ ਆਪਨੇ ਜੋਬ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ?
4: ਹਾਂਜੀ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਹਾਂ ਸੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੀਖ ਦੇਤੇ ਹੈ ਹਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਮੇ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਤੋ ਕਰ ਹੀ ਸਕਤੇ ਹੈ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ।
0: ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਬਾਤ ਭਾਬੀ। ਅਨੂ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਆਪਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਆਪ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ?
2: ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਆ ਜੀ। ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਬ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਇਤਨੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਤੋ ਕਰ ਹੀ ਸਕਤੇ ਹੋ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਮੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਮਿਲ ਸਕਤੀ ਇਤਨਾ ਆਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਂਗੇ। ਔਰ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਾਸ ਸਸੁਰ ਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਮਿਲਾ ਹੈ ਘਰ ਸੇ, ਕਹਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹਮ ਜੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਆਪ ਇੱਕ ਜੋਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਂ, ਜਿਸਸੇ ਔਰ ਵੀ ਹਮੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜੋ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਕੋ ਵੀ ਆਪ ਸਿਕਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।
0: ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਭਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਭਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਗਏ ਲੋ ਜਦ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਾ। ਤੋ ਕਿਰਨ ਭਾਬੀ ਆਪਕਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ?
3: ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕੀਆ, ਮਤਲਬ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੰਨਣਗੇ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਜਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਆਈ ਤੋ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਮਤਲਬ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਉਨਕੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਆ ਹੈ।
0: ਤੋ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ, ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੀ ਮਿਲਾਂ ਜਦ ਘਰ ਮੈਂ ਬਹੂਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾਂ। ਤੋ ਪੂਜਾ ਭਾਬੀ ਆਪਕੇ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ?
4: ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਸਕੇ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋਬ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਰੱਖਾ ਥਾ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ ਤੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਸਕੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਸਕੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਆ।
0: ठीक बात भाभी। तो मैं थर ते पूछना चाहूंगी, जिस तरह हम जॉब कर रही, बाहर आने जाने में भी बहुत दिक्कत आवा, तो थानू ऐसी इश्तिया लगो और कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा आप बताओ भाभी।
2: लेकिन जैसे हम बाहर निकलते हैं जी, कठिनाइयों का तो बहुत सामना करना पड़ता है। सुबह जैसे हम ससुराल परिवार से जुड़े होते हैं, हमें अपनी जिम्मेवारियां भी निभानी जरूर पड़ती हैं कि सुबह उठ के, जैसे हम 4 बजे उठ के, 5 बजे उठ के अपना सुबह का नाश्ता खाना बनाना सब रेडी करना पड़ता है, और इसके साथ साथ बच्चों को भी तैयार करके स्कूल में भेजना पड़ता है। ये हमारी जिम्मेवारियां हैं जी, हमें निभाना बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें मिली हुई है। इसलिए कि जैसे हमें वो परिवार हमारा सपोर्ट कर रहा, तो हमें भी उनका साथ देना बहुत जरूरी होता है। कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन उन कठिनाइयों को हम हैंडल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हाँ अगर हम एक जॉब कर रहे हैं कि हम अपनी जिम्मेवारियों को पीछे छोड़ देंगे। जिम्मेवारी निभाना हमारा सबसे फर्स्ट कर्तव्य होता है जी।
0: बहुत बढ़िया। हाँ जिस तरह ब्याह हो जाए परिवार में, तो
2: हाँ जी
0: जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जा। ठीक बात भाभी। तो किरण भाभी आपके क्या विचार हैं इस बारे में?
3: मेरा विचार है कि जैसे शादी होती है ना, उसके बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। मतलब ये कि शादी के बाद मतलब परिवार की पूरी, फिर बच्चा हो जाता है तो उसकी बहुत ज्यादा, तो फिर जॉब के साथ साथ थोड़ी दिक्कत तो आती है, मतलब हैंडल करना पड़ता है। और एडजस्टमेंट का नाम ही औरत है, तो एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है, फैमिली को भी, मतलब बच्चे को भी, और साथ में जॉब को भी, तो सारा चलता है। और जो ड्यूटी है वो सबसे ऊपर होती है हमारी, जो ड्यूटीज है।
0: ठीक बात भाभी। जिस तरह दिक्कत तो आवा, फिर भी हम दिक्कत का सामना करते हुए भी अपने परिवार नु भी चला रही और जॉब भी कर रही। तो पूजा भाभी आपके क्या विचार हैं इस बारे में?
4: हाँ जी, जैसे हम जॉब करते हैं, मतलब पहले स्टार्टिंग में हमें थोड़ा दिक्कत होती है शादी के बाद, यहाँ से जॉब करते हैं, फिर थोड़ा मतलब बेबी हो जाता है, उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन हमें स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, उसके बाद हमें हम एडजस्ट कर लेते हैं इसको। हमारी हैबिट बन जाती है कि हमें इस टाइम जाना ही है, बाहर निकलना ही है। अपने बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं हम, बच्चों को भी सीख मिलती है, हमें भी, हम भी बहुत कुछ सीख लेते हैं बाहर निकल के।
0: बहुत बढ़िया भाभी। तो यो तो मैंने समस्या पूछ ली, जॉब पूछ ली, तो आप जैसे जॉब कर रहे, तो आपके इसके बारे में क्या विचार भी, आपने जॉब करना कैसा लग रहा?
2: हाँ जी, जॉब करके बहुत अच्छा लग रहा है जी। ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ हमें ये नहीं लगा कि एक हम जॉब करके फंस गए। जॉब करना बहुत अच्छी बात है, और बाहर निकल के बहुत कुछ, हम जैसे 10 मेंबर्स के बीच में मिलते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, और हम सीख के जो कुछ सीखते हैं हम अदर को भी बहुत कुछ सिखा देते हैं इसके बारे में, कि हमें जॉब करना बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लग रहा है जी जॉब करके। प्राइवेट जॉब है लेकिन बहुत अच्छी लग रही है जी प्राइवेट जॉब ये हमें इस टाइम, क्योंकि हमारे इस समय गवर्नमेंट जॉब तो रही नहीं, तो लेकिन ये है कि प्राइवेट जॉब भी बहुत ठीक है आज के टाइम में।
0: तो किरण भाभी आपके क्या विचार हैं, भी आपने जॉब करना कैसा लग रहा है? आप इंजॉय कर रहे इस चीज नु, या आपने ये लग रहा है अभी बस मुश्किल से करना पड़ रहा है?
3: नहीं, जी ऐसा कुछ नहीं, मतलब मुश्किल वाली बात नहीं, मतलब इंजॉयमेंट ही है एक हिसाब से देखा जाए तो। मतलब एक क्वालिफाइड लेडी को घर बैठना अच्छी बात नहीं है, मतलब उसका हम फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि बाहर जाके हमारी जो स्किल्स है वो डेवलप होती हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि हम कोई भी है, मतलब किसी के सामने हम बातचीत करने का जो तरीका है वो डेवलप होता है, और भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं हम टीचिंग से, कि मतलब जिंदगी में आगे बढ़ते रहना, खुशी से इंजॉय कर रहे हैं जॉब को, प्राइवेट को भी, यानी कि गवर्नमेंट ही, गवर्नमेंट मिलेगी जब मिल जाएगी, तो मतलब तब तक तो हम इंजॉय कर रहे हैं ना, प्राइवेट को इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: बहुत बढ़िया विचार, बहुत ज्यादा ही बढ़िया विचार आपके सुनने नु मिल रहे। तो पूजा भाभी आपका क्या विचार है इस बारे में, भी आपनु जॉब करना कैसा लग रहा है?
4: हाँ जी, मतलब जॉब करना मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, क्यों मतलब टीचिंग करना एक ऐसी वो है कि टीचिंग करते हुए हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे हम बच्चे जितना कुछ हमने जब अपने आप मतलब एजुकेशन प्राप्त किया तब नहीं सीखा, जितना कुछ हम आज बच्चों से सीख गए, क्योंकि जो बच्चों को देते हैं हम उससे ज़्यादा हम उनसे सीख लेते हैं। मतलब आज का एजुकेशन ऐसी है कि बच्चे हमें, मतलब एजुकेशन इतना कुछ सिखाती है कि जिसको हम कभी, हमने पहले ये सोचा भी नहीं था कि हम इतना कुछ सीख जाएंगे। मतलब इसको देख के मैं बहुत खुश हूँ जॉब को, और मैंने ये मतलब इस पैसे के लिए भी नहीं, मैं ये चाहती थी स्टार्टिंग से कि मैं बच्चों को कुछ सिखाऊं।
0: तो भाभी आपके विचार बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे यूं पूछना चाहूंगी, जिस तरह आप एक अच्छी गृहिणी और एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ का फर्ज किस तरह निभा रहे, क्योंकि आपके पास बच्चे भी हैं और आपके जो हस्बैंड या घर परिवार वाले हैं उन्होंने भी आपते पूरा, मतलब आप उन्होंने काम कर का दे रहे हैं ना, तो ये फर्ज आप किस टाइप से निभा रहे जॉब के साथ साथ?
2: एक समाज में, मतलब जिसमें हम रह रहे हैं, कि हमारी भी कुछ जिम्मेवारियां होती हैं जी। सुबह जैसे कि हम, पता है कि हमारे पास बच्चे हैं तो हम बच्चों को भी रेडी करते हैं, ठीक है, खाना भी बनाते हैं जी, कि बहुत जरूरी है कि जो हमारे घर परिवार में और सदस्य है कि उनको भी खाना देना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जी हम जिस समाज में रहते हैं उनकी जिम्मेवारियों को तो हमें अच्छे तरीके से निभाना जरूरी है, हमारी ये ड्यूटी है जी।
0: ठीक बात भाभी। तो भाभी किरण, तो किरण भाभी आप बताओ भी, आप ये सारे फर्ज एक साथ लेकर किस तरह चल रहे और किस तरह आप आगे बढ़ रहे?
3: वो ही है जी, जैसे ड्यूटीज जो कर्तव्य होते हैं ना, वो सबसे ऊपर होते हैं इंसान के, चाहे जैसे मर्जी भी पूरा करें उनको। तो मतलब पूरी वही बात है कि अच्छा मतलब जिंदगी को एंजॉय करते हुए, उन ड्यूटीज को निभाते हुए, बच्चे को भी, पति की भी ड्यूटीज, और जो फादर इन लॉज हैं उनकी, मदर इन लॉज की भी ड्यूटी, सब मतलब अच्छे से निभा रहे हैं। मतलब ये है कि इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, ये नहीं कि एक सिर्फ बोझ सा है जो मतलब बाहर निकलना भी एक वो है, नहीं, मतलब इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कि फैमिली का सपोर्ट भी है, ऐसी बात नहीं, फैमिली सपोर्टिव सपोर्ट कर रही है हमें बाहर निकलने में, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है।
0: ठीक बात है भाभी, अपना लाइफ इंजॉय करना चाहिए बंदे ने, हंसता रहना चाहिए है ना, अपना इंजॉय कर कई सारे काम करने चाहिए, बहुत बढ़िया विचार। तो पूजा भाभी मैं आपसे पूछना चाहूंगी भी, आप एक अच्छी गृहिणी, अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ का फर्ज किस तरह निभा रहे?
4: हाँ जी, जैसे मतलब जब हम स्टार्टिंग में हमारी शादी होती है, जॉब नहीं करते उस टाइम हम मतलब घर का, घर तो संभालते ही हैं, घर जॉब, फिर उसके बाद हम जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। जॉब के साथ साथ मतलब हमें घर भी संभालना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरा सोचे कि ये तो सुबह चली जाती हैं, शाम को आती हैं, कुछ काम नहीं है, ये वो है, तो इसके लिए हम सुबह अपना मतलब घर का काम भी करके जाते हैं और अपने मतलब हस्बैंड, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, और इसके लिए मतलब हमें मतलब फैमिली पूरा सपोर्ट करती है।
0: ठीक बात भाभी। तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा किस्सा है जिस तरह आप बंधन में बन चुके भी, सारे फर्ज भी निभाने पड़ रहे, जॉब भी करनी पड़ रही, कोई लाइफ में ऐसा कोई किस्सा होया हो जिस टाइम आपनों लगे हो भी फर्ज में ज्यादा बंध कर रह गए भी, शायद मनु जॉब नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई किस्सा है आपकी लाइफ का?
3: नहीं, एक बार तो ऐसा लगता है, ऐसी बात नहीं, मतलब स्टार्टिंग में जैसे शादी होती है ना, तो उस टाइम मतलब अनमैरिड होते हैं उस टाइम अलग बात है, तो जब शादी हो जाती है उस टाइम ना बहुत सारी ड्यूटीज आती हैं सिर पे, तो मतलब इंसान को एक टाइम लगता है कि फंस गया बंदा। तो फिर जब मतलब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाती है सब कर्तव्य जो ड्यूटीज है उनको निभाने की, और मतलब फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है, अपनी हैबिट हो जाती है, मतलब वही ड्यूटी सबसे ऊपर है इंसान की। और लेडीज का नाम ही यही है कि एडजस्टमेंट, लेडीज को सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे वो अपने घर से आती है ना, उस टाइम माहौल अलग होता है, तो कहीं और शादी, जहाँ उसकी शादी होती है वहां का मतलब बिल्कुल ही अपोजिट होता है माहौल, तो उस माहौल को मतलब उसमें ढलना थोड़ा टाइम लगता है उसको। मतलब ये कि फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ एक मतलब लेडी करेगी एडजस्टमेंट, तो फैमिली को भी एडजस्टमेंट करना चाहिए जो उसके ससुराल वाले हैं। तो वही बात है, लड़की भी एडजस्ट करती है, वो भी एडजस्ट करती है, आहिस्ता आहिस्ता बॉन्डिंग हो जाती है दोनों की, आपस भी अच्छी अच्छी बॉन्डिंग होती है।
0: ठीक बात भाभी। हाँ नहीं, तो जिस तरह ब्याह करवाया का हुआ लड़की है ना, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन जो ससुराल वाले हो उन्होंने भी उस अपने लड़की वो दर्जा देना चाहिए। तो आप एक समाज नु क्या कहना चाहेंगे भी, हाँ आज के समाज नु आगे किस टाइप से बढ़ना चाहिए और उसनु क्या करना चाहिए? तो किरण भाभी सबसे पहला मैं आपके विचार सुनना चाहूँ भी, आप समाज नु, आज के समाज नु क्या संदेश देना चाहें?
3: मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि ना मतलब समाज में जैसे लड़कियां हैं तो उनको मतलब आगे बढ़ाओ, सपोर्ट करो उनको, ये नहीं कि जो इवल सब चल रही ना बुराइयां जो समाज के अंदर हैं तो उनको देख के बच्चे को पीछे कर दो लड़की को, नहीं, मतलब उनको आगे बढ़ाओ, उनको सपोर्ट करो, मतलब सारी फैमिली सपोर्ट करेगी ना, पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो ही बच्चा आगे बढ़ पाएगा। तो मतलब ये कि समाज के अंदर बहुत सारी मतलब बुराइयां चल रही हैं कि ये हो गया ऐसे हो गया, तो नहीं, उसको देख के बच्चे को पीछे नहीं हटने देना चाहिए, उसको आगे सपोर्ट करो ना। और मेन लड़की है, जैसे लड़की को कहीं आगे जाएगी, उस ससुराल जाएगी, ससुराल में जाके उसको मतलब ये इंडिपेंडेंट बनाओ, सेल्फ डिपेंड होगी वो, तभी जाके वो निर्णय ले पाएगी, सही और गलत में फर्क कर पाएगी। अगर वो दब्बू टाइप से हुई तो ये कि मतलब निर्णय नहीं ले पाएगी और डर डर के जिएगी जिंदगी, क्या फायदा, गलत को भी वो हाँ हाँ करेगी, ठीक है, जो गलत है उसके अपोजिट होगी ना वो आवाज उठाएगी, तो फिर चाहे वो बेशक बुरी क्यों ना बन जाए। मतलब लड़की को पढ़ाओ लिखाओ उसको, जो मतलब समाज के अंदर बुराइयां उनको देख के उनको पीछे मतलब करो लड़कियों को, तो उनको मतलब सपोर्ट करो। मेरा तो यही है कि सेल्फ डिपेंड बनाओ उनको, आत्मनिर्भर बनाओ और आगे बढ़ाओ अपनी बेटियों को।
0: बहुत अच्छे विचार, आप यूं कहना चाहा भी जो हमारी लड़की वो हर काम आगे होनी चाहिए।
3: हाँ जी, हाँ जी, मतलब हर चीज में आगे होगी वो, ये कि मतलब आजकल ये है कि आपको पता ही है कि कहते हैं ना कि कलयुग का जमाना है, तो इसमें मतलब पाप फलता है, तो हमें नहीं पता इस चीज का, बाकी ये है कि बच्चे को आगे बढ़ाओ, उसको सेल्फ डिपेंड बनाओ ताकि वो सही निर्णय ले पाए अपनी लाइफ में, आगे बढ़ पाए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं, वाकई में नई जागरूकता मिल
3: हाँ
0: रही है
3: जी, हाँ
0: आपके
3: जी,
0: विचार
3: हाँ
0: आने
3: जी,
0: सुनकर।
3: हाँ
0: अनुभव भी, आपके क्या विचार हैं इस बारे में, भी आप समाज नु क्या संदेश देना चाह, क्योंकि आप एक जॉब भी कर रहे हैं, एक पढ़े लिखे भी हैं और परिवार नु भी संभाल रहे, तो समाज नु क्या कहना चाहेंगे आप?
2: हाँ जी, मैं सबसे पहले ये शिक्षा देना चाहती हूँ समाज में कि जैसे एक मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को अच्छी शिक्षा दिलवाई है, और मैं भी यही है कि हाँ मेरी वजह से भी कोई बच्चे शिक्षित बने, उनको मैं अच्छी शिक्षा दूँ, वो पढ़े लिखे हमें याद करें अपनी ज़िंदगी में कि हाँ हमें भी किसी टीचर ने एक अच्छी शिक्षा दी थी, एक नाम मिले कि हाँ हमारी शिक्षा में जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारी शिक्षा के साथ संस्कारों में भी कोई कमी नहीं छोड़ दी, हम भी बच्चों को यही सिखाना चाहते हैं कि वो अच्छे रास्ते पर चले, अपनी लड़के और लड़कियों में मतलब कोई भेद भावना करें, कि आजकल यही है समाज में लड़के लड़कियों में बहुत ज्यादा डिफरेंस करते हैं, लड़कों को ज्यादा मायने देते हैं कि हाँ लड़का हमारा अग्गा रहेगा लड़की पीछे, नहीं है, हमें ये सबसे पहले होनी चाहिए कि लड़के लड़कियां इक्वल है और पढ़ाई लिखाई में तो सबसे आगे, कि हम ये नहीं कि लड़कियों को अपने घर में छिपा के रखें कि हाँ हम इनको आगे नहीं जाने देंगे, पढ़ने नहीं देंगे, कि समाज में अनेक बुराइयां फैल रही हैं कि इन बुराइयों का के कारण कि हमारी लड़की को कभी कुछ हो जाए, नहीं, लड़की को एक बहादुर बनाओ, लड़की पर अपना विश्वास बनाओ, लड़की को एक अच्छी शिक्षा दो कि हाँ वो अच्छी शिक्षा लेकर अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करे, जब उसको घर से परिवार से अच्छे संस्कार मिलेंगे, स्कूल से अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो ऐसी कोई लड़की नहीं है कि वो गलत कार्य करेगी, अपने जो उसको पता है कि हाँ हमें जो सही गलत की पहचान है उसकी पहचान करना सिखाना बहुत जरूरी है, कि हाँ लड़की को एक अच्छे रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है, और शिक्षा देना उससे सबसे फर्स्ट होगा कि हाँ लड़की को शिक्षा देकर ही हम आगे बढ़ा सकते हैं, एक अच्छी लड़की बना सकते हैं। ठीक है जी,
0: बहुत बढ़िया विचार। तो भाभी आपका कहना यूं भी पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है।
2: संस्कार बहुत जरूरी है जी,
0: बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी डिग्री हो जो हमारी पढ़ाई वो बाद में ही दिखा, पहला बच्चे के संस्कार दिखा। बहुत अच्छे विचार, बहुत ज्यादा अच्छे विचार। तो पूजा भाभी आपके क्या विचार है इस बारे में कि समाज नु आप क्या कहना चाहेंगे?
4: हाँ जी, हम मतलब जो भी लड़का हो या लड़की हो सभी को मतलब संस्कार बहुत जरूरी है सबसे पहले, और संस्कार बच्चा कहाँ से सीखता है? अपनी फैमिली से। तो जैसे हम उसको संस्कार देंगे पेरेंट्स, वैसे ही वो बच्चा सीखेगा। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे को, जैसे लड़की है हमारी, हम सोचते हैं कई बार कि इसको तो चलो पढ़ाई के साथ साथ कहीं बाहर जाने नहीं देना, कोई एक्टिविटी नहीं करानी, कोई गेम वगैरह किसी में नहीं पार्टिसिपेट कराना, नहीं, तो हमें लड़की को सबसे पहले पार्टिसिपेट कर, ऐसा हो गया कि लड़की सबसे आगे है एजुकेशन में भी, एक्टिविटी में भी, और भी जो भी कोई काम है उसमें सबसे आगे है लड़की, और मतलब लड़कों के बराबर ही उसको हमें कोई भी काम मतलब इक्वल कराना चाहिए बच्चे को, क्योंकि उनमें उनको ये ना लगना चाहिए कि ये मेरे से लड़के को ज़्यादा करते हैं, मेरा कम करते हैं किसी के भी मतलब बारे में। तो हम यही चाहते हैं कि हमें अपनी लड़की या लड़का जो भी है उसको एजुकेशन अच्छी देनी चाहिए।
0: ठीक बात भाभी, बहुत बढ़िया विचार। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, आप सबने मेरे ते विचार साझा करे और हमारे श्रोताओं तक यह बात पहुंचाई, और आपके जो विचार है उन्होंने सुनकर मैंने बहुत ही अच्छा लगा कि आपकी इतनी अच्छी सोच है, आप परिवार नु भी संभाल रहे, बच्चा नु भी संभाल रहे, उसके साथ साथ आप जॉब भी कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद भाभी। सुनते रहो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।

0: बहुत बढ़िया चाची हो, तो गाना बहुत बढ़िया सुना दिया। तो जिस तरह हम गाने में कह रहे भी लाडो के बाल काले, तो यो गाना किसनु बताया जा रहा है? अभी उसके सोरे नु बताया जा रहा,
1: हाँ उसके ससुरे नु, उसके
0: उसके ससुरे का कह रहे हैं अभी
1: ससुरे
0: ले
1: के
0: ले भी
1: गाने
0: आवांगे
1: ना ले
0: सोरे।
1: आवांगे, ले ले उन्नू सुनाया जा, उनके तरफ ते कह रहे हैं यो भी ले ले खुशी
0: वह
1: माँ
0: चीज ले
1: मैं
0: आवांगे,
1: चीज लेकर आवांगे, इसकी खुशी माँ कह रहे हैं।
0: उनका बहुत जागे उन्हें चो चढ़ा कभी आएगी
1: हाँ
0: मारा
1: और
0: चीजा इतनी कर दे।
1: अच्छा, ने लाडो नु कह रहे थे हम भी तेरे
0: हाँ
1: सोरे आओगे।
0: हाँ
1: ठीक बात चाची, बहुत बढ़िया गाना सुनाया। तो इसकी गेल जिस तरह तो लाडो को गया, तो
0: हाँ
1: बनने के भी हो आते कोई गाने?
0: और बथेरे
1: हाँ बनने के भी
0: बनने
1: हो,
0: के चो मौज है तभी मारा बहु आवागी।
1: अच्छा तो बनने के भी हो आते
0: हाँ बनने के भी हो गावा
1: देखो।
0: हम
1: अच्छा तो बनने का भी कोई गाना गाया का बताया इसका मनु?
0: तो बथेरे
1: ये भी तो मापा बथेरे, ये भी अगली बच्चे नहीं गा सकते हैं।
0: तो गाओ फिर चाची।
1: बने

0: ਓਰੇ।
1: तो चाची मैं तेरे ते पूछना चाहूं भी जोन सा तन्ने था ने दोनों ने वो गाना सुनाया,
0: हाँ,
1: इस गाने का क्या मतलब और तो क्या कहना चाहिए।
0: ये खुशी के मतलब ला बेटे, खुशी में गावा, अपने बच्चे ब्याहन चढ़ा उसके लिए खुशी खुशी में गाना गावा। इसको घोड़ियां कही जा रही, इसको जकड़ियां कही जा रही। हाँ, ये घोड़ियां गाई जा रही।
1: तो बन्ने नु क्या कह रही, तो भी बन्ने ले बाबे नु साथ क्या कहना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: हाँ बनने अपने
1: जावे
0: ब्याहन भी
1: सोना
0: जागा ना, जो बनना वो अपने बाबे को साथ लेकर जाएगा, अपने मामे नु साथ लेगा, अपने डैडी नु साथ लेकर जाएगा, अपने चाचे नु साथ लेकर जा, जो सारे ताए चाचे अपने बेड़े पड़ोस के सबको लेकर जा, तो जान चढ़ा मैं उसको बनना कह दे भी अपने बनने अपने ताए चाचा को लेकर साथ ब्याहन जाइए अपना।
1: ठीक बात
0: ऐसे
1: चाची, तो बहुत बढ़िया जानकारी दे रही चाची और ताई मारी। तो चाची ताई मैं थर तेन्यू पूछना चाहूं भी ने, तुम्हारे लाडो के बनने के गाने हो गए, जिस तरह अपना तीज त्यौहार हो आता या कोई न्याणा जम्मा था जद भी गाने गाए जहां ते।
0: हाँ बथेरे बेटे, जद भी चो चढ़ जाता तीजा के द्वार मां कह कहन पहला बेड़े झूंटे करा त्यार गीत गावा ते जमी।
1: ठीक
0: हाँ
1: बात ताई, और ताई जिस तरह अपना न्याणा हो करा था तो उस पछटी कह दे जिन्हू।
0: हाँ अपने ले ले जिस तरह बड़े बडेरिया के उनके गीत गाए करा ते ना बच्चा होया गर्म खुशी हुई है।
1: अरे ये छठी हो जिस तरह न्याणे की छठी क्यों मनाई जहा।
0: छठी अपने बड़े बडेरिया की हुआ बेटे, अपने
1: पितरा के
0: हाँ
1: नाम थे।
0: हाँ अपने बड़े बडेरिया का माथा टेका उनकी हुआ आया।
1: ठीक बात ताई, तो चाची तो मनु न्यू बता भी जोन से ने एक बात भी गावा जिस तरह है ना, तो ने बात क्यों गाए जहां थे इसके बारे में थोड़ा सा बता।
0: बात न्यू गाए जा बेटे, अपनी लड़की के घर जा तो नानके बनका जा, नानकिया नानके तो वहां जाकर बात गावागी
1: हाँ लड़की
0: फिर
1: किसी
0: उन्हों।
1: बात

0: दिन डालिया।
1: बस
0: ठीक
1: ये
0: बात।
1: गाने गावा इस तरह सावन के।
0: तो चाची जिस तरह थम इस माँ गाना गह रहे भी आवा मेरी माँ का जाया कुछ
1: हाँ
0: बतहरी थम, तो
1: हाँ
0: क्या कहना चेहरी इस गाने के माध्यम ते इस
1: यो
0: माँ
1: बेटे इस माँ खाने का
0: गाने।
1: लियावा भाई आवा खाने का लियावा गा घ्योर लड्डू और फिर हम त्यार हो आवा घ्योर लड्डू खावांगी मेहंदियां लावांगी नौ पल्स लावांगी नौ में नवे सूट पहरांगी सैंडल फिर अपना उन्नू सोमन फिर जाकर उन्नू पहरांगी और
0: भाई
1: झूठे लेती
0: भाई
1: अपने भाइयों के दो

0: बैठा भाई गड्डे पर कल्याण के गयो के हैं भाई यहाँ का चोचड़ा सबनो।
1: ठीक बात ताई, तो भी बता थोड़ा सा ताई, भी तीज का त्यौहार आर्यो गाने के माध्यम ते भी किस तरह मनावाते थम।
2: बेटे पे खुशियां थे मनावा थे भी तीज का त्यौहार था यो तुम्हारे सारे नहीं आंदे रहा भी कदी तीजा का आएगी तीजा सोन में आएगी फिर बसेरे आएगी बस नहीं चल दे रहा भी अपने गांव में तो नहीं हुआ भी आज माता दो कणी आज संती दो कणी नहीं चल दे रहा भी सारी चीज जमा नहीं हुआ खाने पीने नु कर ले तो कोई जानदा भी नहीं धोख मारने नु कैसी धोख मारा पहले सारी चीज ने धोखे कराते सबकी मेहनती करे कराते आप अपने
0: जीव तो यूं कहा दो गुलगुले बनाए थे बस माथा माथा टेक दे खान देनी है का। पहला तो मैं प्रांता भर भर का गुलगुलिया की बोय कराते
2: खामा ते भी यार बंडा ते भी कह देते मेहंदी लगे रात चीकने चीकने जमी सोने लगा ईव कौन खावा
0: और अपने भाईचारे पाई वनडे करांती ईव कौन दे भाईचारे नु कहा बस कल्ली बैठ का खाई ले बस का और नहीं और वहां ते ले आवांगे बाहर शहर में ते वहां खाई लेंगे जब तक प्रांता भर का वो करांती प्रांता प्रांता बांडे करांती बथेरे बांडे बनते अड्डे अड्डे कॉले भर भर का बांडे करांते ईव नहीं बांड दे बेटे कोई है।
1: ठीक बात चाची, तो इस ते अलग थम ब्याह में कुछ और भी गाय कराती नहीं जिस तरह ने तो सुहाग अपने बनने के लाड्डो क्यों गए इस ते अलग किस असी मजाक का भी कुछ गाय
2: कराती बहुत सिटनिया दे कराती एक दूसरे ने जोन से मजाक मलांगा ते उन्हें दे देती जिस तरह बहुत जावा थी बहुत जनु दे देते अग बाईया के साले आए गए उन्हें उनके मेल
0: की बहुत जन नंदा नु सिटनिया दे देती
2: न्यू नंदा नु दे दे कराती
1: तो कोई सिटनी गाय का भी बतावांगी मनु।
0: हां बतावांगे
2: ए मैं पाबी जोगी रानी आ मूंगरां दी दाल ए मैं पाबी जोगी रानी आ मूंगरां दी दाल ए मैं लपक पाया मिर्चा पानी दे गड़वे चार ए मैं लपक पाया मिर्चा पानी दे गड़वे रे मैं गूत पकड़दी रहगी या गोते खैगी चार ए मैं गूत पकड़दी रहगी या गोते खैगी चार।
1: बहुत बढ़िया, तो इस सीठनी में क्या कहा आपने मनु तो कुछ समझ ही नहीं आई है बात, क्या कहना चाहा आपने।
0: अच्छा मैं मान यूं कहे भाभी वे जिस तरह ले ले उनके ना मजाक मा इन सीठनी दी आ रानी थी उमा ज्यादा मिर्चा पड़ गई थी तो यह गोते खाएगी मन ने कहा मैं पानी लिया मा इतना अपना
2: भूत पकड़ ली तो आठ मड़ी जी
0: और आठ पीछा हो।
1: ठीक बात चाची, तो इससे अलग भी कोई सीठनी तो जिस तरह था नया सीठनी दी इस ते अलग भी कोई सीठनी है थम दे सका जून सी।
0: हाँ या बेटे दे सका हम सीठनी और दे सीठनी वापा बात दूंगा
1: तो कौन सी है सीठनी थोड़ा गैका बताइयो
2: गैका पहले करते हैं मैंने सौंख बहुत। हाँ

0: चुम बाते।
1: तो जोन सी था ने सीठनी गाई इसमें बलिंगड़ू कह रहे थे हम, यो बलिंगड़ू किस वास्ता प्रयोग करा गया?
2: बिल्ली के बलिंगड़ू होए करते भी चलू प्यार में कह रहे
3: हैं, मजाका में कह दे करा
2: ये ना बिल्ली के ऊं कह दे बेटे, बिल्ली के बलिंगड़ू मनु आसने की बात में के मारे भी बलिंगड़ू कनो दर्द दे हैं,
4: मजाक में कह
2: हां भी बलिंगड़ू बिल्ली के ऊं छोटे छोटे।
1: अच्छा
2: उन्होंने कह दे भी चल भाभी नु कह रही हां या किसी साले नु कह रही हां भी बलिंगड़ू
4: मजाक में ले दे उसका नौ दर्द दे।
1: ठीक बात आई।
2: हाँ एक सीट नहीं और भी देनी चाहे बेटे मन पता ला ले उसका भी।
1: ठीक बात आई,
2: बहुत सौखा।
1: ठीक बात आई तो दो फिर वह सीटनी।
2: हाँ यह बचोले के वास्ता वा चाड़ रोवा चाड़ी नू यो बचोला रोवा दाड़ी नू तू मेरी अम्मा मैं दाड़ी किते मंगा पुत को लेगी।

0: मंगा
1: हाँ
0: पुत
1: पुत
0: को
1: को को
0: कोलेगी।
1: लेगी, ठीक बात आई। तो जोन सतन ने वो गाना गाया है बचोले वास्ता, बचोला अपना किसनू कहा जा।
0: बचोला जोन सा बेटे ने अभी रिश्ता करवावा, रिश्ते मनोवा बचोले नु सुनो।
1: लड़के का करावा या लड़की का रिश्ता करावा,
0: हाँ
1: उसको बेटे बचोला कहा जा।
0: बचोला कहांगे, उसनु गुंठी पावांगे, उसनु कपड़े देंगे भी, वो
1: और
0: बचोला
1: उसको
0: आया
1: सीछनी
0: ओ ले ले
1: देंगे।
0: ब्याह का सद्दा लेके आवागा, जैसा किसी ने वरत दी आले ने कह दिया, ओ भी पूत आले ने कह दिया, ओ भी ओ
1: हाँ,
0: सारा
1: और
0: उसकी
1: उसनु
0: जिम्मेवारी
1: बचोला
0: हो जा।
1: कहा जा, फिर बचोले ने ये सीठनी दे दे यहाँ। ठीक है, बचोला बीच का बंदा हुआ दी, लड़की आली की भी बात बतावा, लड़के आली की भी,
0: हाँ दोनों पास से कहो
1: दोनों
0: बचोला।
1: पासे कहो। तो बहुत बहुत धन्यवाद ताई चाची। बस मैं था नु यू पूछना चाहूं भी, थम जोन से मारे आज के बच्चे हैं, जोन से मारा मॉडर्न टाइम आ, इनु क्या संदेश देना चाहा, अपनी संस्कृति के बारे में क्या कहना चाहा। हमने कहा बेटे जैसा पहला भी तमारा मोल जमाना यो ही होना चाहिए बीजा, और यो चले रहनी है, यो ही चलना चाहिए दोबारा बीजा भी।
0: ठीक बात चाची। तो ताई तो क्या कहना चाहा भी आज के टाइम के बारे में, पिछले टाइम के बारे में।
1: बस बेटे मनु भी वही पिछले टाइम लगा, अच्छा तो नहीं वो भी कोई ओ
0: सुनता
1: ही
0: नहीं,
1: होना
0: वो
1: चाहिए
0: ही
1: भी।
0: होना चाहिए भी ले ले भी। उसमें तो बहुत रौनक कराती एक दूसरे बंदे नु चाहे कराती, ये कोई चाहता नहीं किसी नु, पता नहीं
1: पहले
0: है
1: तो
0: किसी नु।
1: ममता थी बेटे, बहुत सबनों
0: हाँ
1: प्यार था,
0: प्यार था सब।
1: भाईचारे का प्यार था, बहन
0: हाँ
1: भाई का प्यार था। इब तो बेटे
0: हाँ
1: किसी ने प्यारो नहीं रहा, भाई बहन का नहीं रहा और माँ बाप का नहीं रहा, इब नहीं है। इब तो
0: बस
1: आप अपनों, बस
0: बस
1: मैं
0: बस
1: खुश हूँ,
0: फोन ना में
1: दूसरा
0: बैठे
1: ना
0: सारा
1: खुश
0: दिन,
1: हो।
0: ना किसी के गाने का
1: बस
0: ना किसी के बजाने का,
1: बस
0: बस फोन
1: ये
0: सुन लियो
1: पहली
0: सब
1: आला
0: कुछ
1: मॉडल
0: ना बात
1: जमाना आना
0: करते।
1: चाहिए, और ही होना चाहिए, जब
0: हाँ
1: अच्छा ठीक लगा टाइम।
0: रिश्तेदारी में कराते, दो दो दिन बैठे रहते, रात नु बातें करे कराते, ये फोन ना में बैठे हैं किसी के चले जा, फोन सुन रहे हैं
1: और
0: अपना,
1: नहीं घड़ी मानू जेले हैं, घंटा घंटा रहा कोई, और रेंदे भी नहीं है,
0: रहने नहीं जितनी
1: फिर
0: देर बैठेंगे फोन सुन रहे हैं।
1: फोन सुन रहे, किसी की मेरी तेरी भाईचारे की बात नहीं सुन दे हैं,
0: हाँ ले ले
1: भाईचारे की बात सुना, दुख
0: पता
1: सुख की
0: ना
1: बात
0: भाभी
1: सुना।
0: इतनी दूर से आ रहा कोई,
1: हाँ
0: चल बैठा का दो घड़ी नहीं हुई
1: हाँ
0: होगा
1: बात
0: सर,
1: ना,
0: भी आया भाड़ा किराया
1: हाँ
0: भी खर्चा, घर
1: खर्चा
0: का काम भी छूट गया।
1: और अरबी बैठ को कोई गंगरत की बात
0: हाँ
1: करा, कोई
0: करता
1: गंगरत
0: कोई
1: की बात नहीं
0: कोई नहीं
1: करता,
0: करता, एक तो फोन
1: बस
0: ना
1: फिर
0: बैठे हैं बस इन्हीं में देख रहे सब कुछ,
1: बस
0: इन्हीं
1: वाजा मारी
0: तो
1: जाओ,
0: दुनिया बिगड़ रही,
1: किसी
0: इन्हीं
1: नु
0: तो सिमर
1: बेटा कह
0: रही
1: दे,
0: है
1: किसी नु बेटी कह दे, कोई किसी की नहीं
0: बस।
1: सुन दिया,
0: हाँ
1: बस आप अपनो फोन ना पर रहा,
0: बस
1: यही किसी
0: बस
1: की नहीं सुनने का है।
0: ठीक बात ताई, ठीक बात चाची। बहुत बहुत बढ़िया जानकारी दे दी मार मेरे ते भी और मारे श्रोता ते भी, और जोन से मारे ने लोक गीत लोग भूल दे जा रहे, थाने इसके बारे में मनु बहुत बढ़िया गाय का भी जानकारी दी और बताया का भी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल ते धन्यवाद। सुन दे रहो रेडियो वितस्ता, आम सफर जिंदगी का 90.0 MHz पा।
2: विदस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का परवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट अनु, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। सब्जियों की खेती के लिए प्रो ट्रे व कोकोपीट तकनीक से पौध तैयार करें, मजबूत होंगी जड़ें। रोपाई से 4 से 5 दिन पहले ट्रे को धूप में रखें और सिंचाई कम करें। सब्जियों की अगेती खेती और बम्पर पैदावार के लिए स्वस्थ पौध जरूरी है। जमीन की क्यारियों में पौध तैयार करने पर बीजों का अंकुरण कम होता है, जड़ें टूटती हैं और मृदा जनित फफूंद का खतरा बना रहता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के सब्जी विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार अरोड़ा के अनुसार इस समस्या का सटीक आधुनिक समाधान प्रो ट्रे व कोकोपीट तकनीक है। बेहतर परिणामों के लिए पॉन्टिंग मिश्रण के सही अनुपात के साथ साथ कुछ मुख्य वैज्ञानिक विधियों को अपनाना बेहद जरूरी है। इसके लिए रोपाई से 4 से 5 दिन पहले ट्रे को शेड से बाहर खुली धूप में रखें और सिंचाई कम करें। 25 से 35 दिनों में जब पौधे 4 से 5 पत्तियों के हो जाएं, तब शाम के समय खेत में रोपाई करें। 70% कोकोपीट 30% केचुआ खाद का उपयोग करें। प्रो ट्रे टमाटर बैंगन मिर्च और शिमला मिर्च के लिए 99 खांचों वाली प्लास्टिक ट्रे सर्वोत्तम रहती है। पुरानी ट्रे का दोबारा इस्तेमाल करते समय उसे फफूंदनाशी घोल या साफ पानी से अच्छी तरह धोकर सुखा लें। पॉन्टिंग माध्यम 3 भाग अच्छी तरह धुली हुई कोकोपीट, 1 भाग वर्मिकोलाइट और 1 भाग परलाइट का मिश्रण आदर्श माना जाता है। सामान्य विकल्प के रूप में 70% कोकोपीट और 30% बारीक छनी हुई केचुआ खाद वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। खांचे के बीच में गहरा खड्डा बनाकर बीज डालें। कोकोपीट की धुलाई, कोकोपीट बिक्र को पानी में डालकर अच्छी तरह फुलाएं और 2 से 3 बार साफ पानी से धोएं। ट्रे भरना, तैयार मिश्रण को प्रो ट्रे के सभी खांचों में एक समान भरें। इसे ज्यादा जोर से ना दबाएं ताकि हवा का संचार बना रहे। रोपण, प्रत्येक खांचे के केंद्र में 0.5 से 1 सेंटीमीटर गहरा खड्डा बनाकर एक एक प्रमाणित बीज डालें। बीजों को ऊपर से कोकोपीट की हल्की परत से ढक दें। हल्की सिंचाई, बुवाई के तुरंत बाद बारीक फवारे, हल्की सिंचाई बुवाई के तुरंत बाद बारीक फवारे या स्प्रे पंप से पानी दें ताकि बीज जगह से ना हिले। प्रबंधन व देखरेख, ट्रे को 3 से 4 दिन के लिए काली पॉलीथीन से ढकें। अंकुरण चैम्बर प्रभाव, बुवाई के बाद 4 से 5 ट्रे को एक के ऊपर एक रखकर ऊपर से काली पॉलीथीन से 3 से 4 दिन के लिए ढक दें। इससे नमी और उचित तापमान मिलने से 95% से अधिक अंकुरण एक साथ होता है। धूप और सिंचाई, अंकुर मिलने लगे तो ट्रे को अलग अलग करके नेट हाउस या पॉली हाउस में धूप में रखें। सुबह आवश्यकता अनुसार हल्का पानी दें। पोषण, बुवाई के 12 से 15 दिन बाद 2 ग्राम 19:19:19 NPK प्रति लीटर पानी में घोलकर हल्का छिड़काव करें। मॉनसून में लौकी की फसल में एंथ्रेक्नोज रोग का खतरा, किसान लगातार नजर रखें। अत्यधिक रोगग्रस्त पत्तियों व सड़े फलों को तोड़कर खेत से बाहर फेंकें। मॉनसून में लौकी की फसल पर फफूंद जनित एंथ्रेक्नोज रोग का खतरा सामने आया है। ऐसे में रोग का प्रकोप बढ़ने पर किसानों की पैदावार और आय पर सीधा असर पड़ सकता है। करनाल के नीलोखेड़ी क्षेत्र के संधीर गांव और आसपास के खेतों में रोग के लक्षण मिलने के बाद उद्यान विभाग ने किसानों को फसल प्रबंधन की एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश में करीब 20,474 हेक्टेयर क्षेत्र में लौकी की फसल होती है। पत्तियों पर भूरे धब्बे फल भी हो सकते हैं। प्रभावित एंथ्रेक्नोज की शुरुआती पत्तियों पर छोटे हल्के पीले अथवा पानी से भीगे हुए भूरे धब्बों से होती है। संक्रमण बढ़ने पर ये धब्बे गहरे कत्थई या काले रंग के हो जाते हैं। प्रभावित हिस्सा सूखकर छेद जैसा दिखाई दे सकता है और गंभीर स्थिति में पत्तियां झुलसने लगती हैं। रोग बढ़ने पर बेल की टहनियों और कच्चे फलों पर भी काले धब्बे बन सकते हैं। फल में सड़न शुरू होने से उसकी गुणवत्ता खराब होती है और मंडी में कम भाव मिलने की आशंका रहती है। दिल्ली NCR में बड़े पैमाने पर सप्लाई। हरियाणा में लौकी समेत कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। दिल्ली NCR की नजदीक की मंडियों के कारण करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सोनीपत और आसपास के क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन किसानों के लिए महत्वपूर्ण आय का साधन है। 20,474 हेक्टेयर में लौकी फसल होती है। पिछले साल 2.86 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में दवा का छिड़काव करें। एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण के लिए थियोफिनेट मिथाइल 70% WUP का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर साफ मौसम में छिड़काव करें। खेत में बारिश का पानी जमा ना होने दें। अत्यधिक रोगग्रस्त पत्तियां और सड़े हुए फलों को तोड़कर खेत से बाहर नष्ट करने की सलाह भी दी गई है ताकि संक्रमण दूसरे पौधों तक ना फैले। खेत में नमी नहीं बढ़ने दें। विभाग से संपर्क करें। कृषि विज्ञान केंद्र विशेष डॉक्टर राजेश बेरवाल ने बताया कि बारिश के बाद खेतों में नमी और पत्तियों पर लंबे समय तक पानी की बूंदें बनी रहने से फफूंद जनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है। किसानों को नियमित रूप से पत्तियों और बेल फलों की निगरानी करने की सलाह दी गई है। लक्षण दिखने पर विभागीय सिफारिश के अनुसार उपचार करने से रोग को फैलने से रोका जा सकता है। तोरियों की बुवाई से पहले खेत तैयार करें। उन्नत बीज व खाद का रखें प्रबंध। उन्नत किस्म संगम TL15 और TH68 का करें उपयोग। तोरियों की बिजाई के लिए खेत को तैयार कर लें। तोरियों की उन्नत किस्म संगम TL15 या TH68 के बीज का प्रबंध कर लें। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने किसानों को तोरियों की बिजाई की तैयारी करने की सलाह दी है। 1 एकड़ में संगम TL15 या TH68 किस्म का 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त है। सिंचित तोरियों में बिजाई के समय 26 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ डालें। असिंचित फसल में 35 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट बिजाई के समय डालें। जिंक की कमी वाली जमीन में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट दें। खड़ी फसल में कमी दिखने पर 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव करें। सुडान घास की कटाई करें। सुडान घास व संकर हाथी घास की हरे चारे के लिए कटाई करें। वर्षा ना हो तो पानी लगाएं। प्रत्येक कटाई के बाद 22 किलोग्राम व 26 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से क्रमशः सुडान घास व संकर हाथी घास में दें। ज्वार व बाजरे की चारे वाली फसलों में बिजाई के 30 से 35 दिन बाद 22 किलोग्राम अथवा मकचरी में 44 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ दें। वर्षा ना हो तो पानी लगाएं। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सके। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

क्या आप जानते हैं फिल्मी दुनिया के एक महान संगीतकार महज 50 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसे। 50 फिल्मों के लिए संगीतकार के तौर पे अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। हालांकि शुरुआत में उनको नाकामयाबी भी देखनी पड़ी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर क्या था, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। वो कोई और नहीं थे, रोशन लाल नागरथ, जिन्हें रोशन के नाम से जाना पहचाना जाता रहा।

एक भारतीय ऐसराज वादक और संगीत निर्देशक थे। वो एक्टर और फिल्म निर्देशक राकेश रोशन और संगीत निर्देशक राजेश रोशन के पिता और हृतिक रोशन के दादा थे। रोशन का जन्म 14 जुलाई 1917 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत, अब पंजाब पाकिस्तान के गुजरांवाला में एक पंजाबी सरस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था।

रोशन ने कम उम्र में संगीत की तालीम शुरू की और बाद में लखनऊ के मैरिस कॉलेज में पंडित एसएन रतन्यंकर इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल की।

स्रोत वादक के तौर पे रोशन ने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पे काम किया, लेकिन सन 1948 में ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने के लिए बॉम्बे चले गए, जिसे अब मुंबई कहते हैं।

सन 1949 में संगीत निर्देशक ख्वाजा खुर्शीद अनवर को असिस्ट किया फिल्म सिंगार के लिए। निर्माता निर्देशक केदार शर्मा ने सन 1949 में अपनी फिल्म नेकी और बदी के लिए रोशन को संगीत का जिम्मा सौंपा। ये फिल्म ज्यादा चली नहीं, पर केदार शर्मा ने रोशन को एक और मौका दिया। सन 1950 में फिल्म बावरी नैन के लिए, जो एक सुपरहिट फिल्म

सन 1950 में संगीतकार रोशन ने मोहम्मद रफी, मुकेश और तलत महमूद जैसे गुलकारों के साथ काम किया। फिल्म आई मल्हार सन 1951 में।

फिल्म शीशम, फिल्म अनहोनी सन 1952 में मीरा भजन के लिए रोशन ने लता से फिल्म नव बहार के लिए गीत गवाया। गीतकार इंदीबर और आनंद बख्शी ने संगीतकार रोशन के लिए शानदार गीत लिखे। सन 1960 के बाद फिल्म भला आदमी सन 1956 में, सीआईडी गर्ल सन 1959 में और सन 1966 में फिल्म देवर।

1960 में संगीतकार रोशन ने फिल्म बरसात की रात के लिए संगीत की धुनें तैयार की। फिल्म बरसात की रात ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।

1962 में फिल्म आरती, सन 1963 में फिल्म ताजमहल और फिल्म दिल ही तो है, सन 1964 में चित्रलेखा, सन 1968 में अनोखी रात, सन 1966 में फिल्म

दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। संगीतकार के तौर पे उनका शानदार सफर रहा। फिल्म नेकी और बदी, बाबरी नैन, मल्हार, अनहोनी, नौबहार, राग रंग, आरती, ममता, ताजमहल, बरसात की रात, संस्कार, शीशम, आगोश, फिरदौस, गुनाह, माशूका, बाप बेटी, बाराती, दिल ही तो है और बेदाग।

सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किडनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता आरजे किरने। यह है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

कुछ लम्हे होते हैं जो बस दिल में बस जाते हैं, कुछ बातें होती है जो हर रोज की भागदौड़ से भी याद रह जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी और आप सुन रहे हैं किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। यहां हर कहानी में होगी एक गहराई, हर शब्द में होगा एक एहसास और हर पल में एक अपनापन। तो आइए दिल से जुड़ते हैं और शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर साथ साथ। काम को काम की जगह तक ही सीमित रखें। बहुत जरूरी होता है अपने काम और जिंदगी के बीच बेहतर संतुलन बनाना। कुछ नौकरियों में ऑन और ऑफ होते ही सीमाएं सभी के लिए बेहद स्पष्ट और साफ सुथरी होती है, लेकिन वहीं कुछ अन्य नौकरियों में ये सीमाएं या तो धुंधली हो जाती है या बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसे में ऑफिस में रहते हुए आपका अपने काम से मानसिक रूप से अलग हो पाना एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन सकता है। तब क्या उपाय किए जा सकते हैं कि आप अपने काम को काम की जगह तक ही सीमित रखें? लाइफ एंड मैनेजमेंट के कुछ टिप्स बताती हूँ। नंबर एक, ऑफिस आवर्स के बाद का समय तय करें। अगर आपकी जॉब में फ्लेक्सिबल शेड्यूल है तो सबसे पहले आप ये तय कर लें कि आप दिन में कौन से समय पर ऑन ड्यूटी रहना चाहते हैं और कब पूरी तरह से ऑफ होना चाहते हैं। अगर आपके लिए हफ्ते में कुछ निश्चित घंटे काम करना बेहद जरूरी है तो पहले उन्हें अपनी पर्सनल प्राथमिकताओं के हिसाब से बांट लें। ऑफिस आवर्स के बाद का कोई समय तय कर लें। नंबर दो, मानसिक स्पष्टता को बनाए रखना भी जरूरी। दिन की शुरुआत में किए हुए काम या अंत में किए हुए अपने काम और टास्क एक बार किसी डायरी में लिख लें और उन्हें व्यवस्थित करें। इससे आपको चिंता नहीं होगी कि आपसे कुछ छूट गया या कोई जरूरी डेडलाइन मिस हो गई। हर दिन के अंत में केवल 5 मिनट निकालकर ये जांच लें क्या आपके सभी जरूरी कार्य पूरे हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। स्पष्टता बनाए रखें। नंबर तीन, सहकर्मियों से संवाद करें, सही अपेक्षाएं रखें। अगर आपकी नौकरी में काम और आराम के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची हुई है तो ऐसे में अपने सहकर्मियों को बता दें कि आप ऑफ ड्यूटी समय में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। अगर आपकी भूमिका से लगातार जुड़े रहना जरूरी है तो एक स्पष्ट गाइडलाइन बना लें कि कब और कैसे कोई आपसे संपर्क कर सकता है। सीमाएं स्पष्ट होंगी तो अपेक्षाएं भी सही बनती है। लोगों से संवाद करें। नंबर चार, काम के घंटों में ही अपना कार्य पूरा कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आप आपके शाम या रात ना बिगाड़े तो दिन के समय को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें। ईमेल के लिए अलग समय तय करें, प्रोजेक्ट्स के लिए समर्पित टाइम ब्लॉक करें और जरूरत हो तो काम के लिए शांत जगह भी बदल लें। जरूरी कार्यों को पूरा करने के लिए अपने लिए एक मीटिंग शेड्यूल करें और उसे निभाएं भी। दिन में फोकस बढ़ाएं और रात में सुकून पाएं। दोस्तों, वक्त का पंख तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी उड़ जाता है। देखते ही देखते हमारे इस खूबसूरत सफर का आज का पड़ाव आ गया। याद रखिए, जिंदगी छोटी है लेकिन अगर इसे मुस्कान और उम्मीद के साथ जिया जाए तो हर पल अमर हो जाता है। तो मिलेंगे हम फिर एक नए दिन, नई बातों और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का

ख्याल रखिए और सुनते रहे FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। नमस्कार, मुस्कुराते रहिए।

घर रुके थे कदम, पर सफर तवील था। मुख्तसर सी चांदनी सफर के दौरान हम सफर बनी। ठगा ठगा सा मौसम, अंगड़ाइयां लेती ये हवाएं, नाजुक यादों को अपनी पनाहों में शामिल कर मुझे रास्ता बताते, सफर को खुशनुमा बनाते, माजी के पलों को लौटाते, जो मैं उनसे लिपटता, उनको छू जाता, उनकी खामोशी तोड़ता, फिर मैं कहता, तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम ही मेरी इबादत में

आज मौसम में ये कैसी बेचैनी है। शायद उनकी आमद का पैगाम लेकर आई है ये हवा। सदियों के फासले पल भर में मिट जाएंगे, इसका भरोसा मत करना, क्योंकि हर बार दस्तक दे चुकी है वो मेरी दहलीज पर, वो जो अपना हाले दिल बयां करने के लिए बरसों से बेताब है। शायद इसलिए यह मौसम की बेचैनी मेरे सफर में शामिल है। दश्ती तन्हाई से दामन छूटा जा रहा है, मेरी बेखुदी अब तू ही संभाल मुझे।

अब बेहतर है मौसम खिजा में चिनारों से गिरते इन पीले पत्तों को जलाया जाए और इस आग की तपिश में झुलस जाए। जिस्मों का क्या है, चलते हैं, ढलते हैं, जलते हैं, रूह लाफानी है, सिर्फ पोशाक बदलती है। जिस्मों का क्या है, चलते हैं, ढलते हैं, जलते हैं।

रास्ते हैं दुश्वार पर मंजिल है करीब। दौरान सफर जो मिले वो छूट गए, रह गए पीछे अपनी यादों के साथ। माना यादें जिंदगी का अहम सरमाया होती हैं, पर इसके बावजूद मैं जानता हूं कोई क्यों याद करे किसी को, जब जिंदगी के इस तबील सफर में रिश्तों ने अलविदा कहा हो। मुझे चुपचाप देखा जाता नहीं, अगर तेरे बस में हो तो आके मेरी तकदीर बदल दे। मुझे चुपचाप देखा जाता नहीं, अगर तेरे बस में हो तो आके मेरी तकदीर बदल।

मौसम है तुम्हारी यादों का, हमें बिछड़े हुए कई युग बीत गए। इन सावन की बारिशों में भीगने का मंजर आज भी आंखों के सामने ठहर जाता है। अब जब कई सावन आए और आके चले गए, पर इन भीगती हुई बारिशों में तुम्हारे मुस्कुराने का सावन न जाने क्यों खामोश हो गया। हमसे मिलता तो होगा हूबहू अंदाज उनका, हमसे मिलता तो होगा हूबहू अंदाज उनका, तुम्हें पूछने वाले लेकिन हम जैसे ना होंगे।

कुछ तो सपने थे और कुछ हकीकत। रास्ते तो थे पर बीच रहा हम सफर, खो गए पल भर में। यहां मौसम बदलते गए और तर करते रहे मेरी आंखों की खामोशी। इस काले घने धुएं में तुम्ही से मिलने की जुस्तजू बरकरार रही और रात भर जलते रहे, बुझते रहे रोशनियों के दिए। फिर धीरे धीरे मेरे तुम्हारे रास्ते सिमट गए। अब गुमनामी की इन बस्तियों में तन्हा पत्थरों को तराश कर क्या हासिल।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं आपका रेडियो दोस्त दीपक आपका स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम फिल्मी किस्से में। इस कार्यक्रम में हम हर मर्तबा बात करेंगे किसी भी एक गोल्डन ईरा मूवी के बारे में और जानेंगे उनके अनकहे किस्से और सुनेंगे उस फिल्म के गीत। आज हम बात करेंगे 1970 की सुपर डुपर हिट फिल्म के बारे में, जिसने 2020 में अपने 50 साल पूरे किए हैं। वह फिल्म है आन मिलो सजना, जिसमें लीड रोल में सुपरस्टार राजेश खन्ना और आशा पारेख। इस फिल्म के निर्देशक थे मुकुल दत्त।

गीत तो था बहुत मधुर। अब गीत से मुझे इसी फिल्म के एक और गाने का किस्सा याद आया। इस फिल्म में एक गाना है अच्छा तो हम चलते हैं। इस गाने के आखिरी छंद सूर्यास्त के समय

0: शूट किया जाना था, इसलिए सभी जल्दी में थे और हड़बड़ी में काका यानी राजेश खन्ना और आशा पारेख दोनों एक दूसरे की पंक्तियां गाने लगे और बाद में इस किस्से को याद कर खूब हंसे। तो अब गाने को याद कर ही लिया है, इसे सुन भी लेते हैं किशोर कुमार की सुरीली आवाज में।
1: अच्छा

अच्छा तो हम चलते हैं। अरे नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आपको एक और किस्सा जरूर सुनाने जा रहे हैं। इस फिल्म के एक और गीत की शूटिंग धान के खेतों में होनी थी, जिसमें बहुत कांटे थे, जिस वजह से आशा जी को बहुत दर्द सहना पड़ा, जिसने उनके लिए इस गाने को और कठिन बना दिया था। और वहाँ केवल एक ही वॉशरूम था, इसलिए वह शूटिंग के बाद ही होटल वापस जा सकते थे। इतनी कठिनाई के बाद भी आशा जी ने मुस्कान के साथ इस गाने को शूट किया और हमें मुस्कान के पीछे के दर्द को महसूस ना होने दिया। अब इस गीत के बारे में इतनी बात हो ही गई है तो आपको सुना भी देता हूँ, जो है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में, रंग रंग के फूल खिले।

किस्सों का सफर जारी है और गीतों का भी। कहा जाता है इस फिल्म के दौरान आशा पारेख जी को चोट लग गई थी, लेकिन आशा जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि चोट उन्हें इस फिल्म के सेट पर नहीं बल्कि किसी और फिल्म के सेट पर लगी थी, और जब वह वहां से शूट कर इस सेट पर पहुंची तो चोट की वजह से उनसे जूता नहीं पहना गया, जिसके बाद ओम प्रकाश ने उनके एक्सरे जांच की व्यवस्था की और फिल्म के एक दृश्य में काका ने उन्हें उठाया। आप देखेंगे कि वह नंगे पैर और उनका पैर सूजा हुआ है। थी ना यह रोचक जानकारी। अभी और किस्से और गीत बाकी हैं, उसके लिए बने रहे हमारे साथ और सुने लता जी की आवाज में यह गीत, तेरे कारण मेरे साजन।

आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म का गीत। हम सब जानते हैं राजेश खन्ना जी को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है और वह कितने लोकप्रिय थे। इस फिल्म के एक गाने को छोड़ बाकी सभी गानों की शूटिंग कश्मीर में हुई और उस समय राजेश खन्ना जी को देखने के लिए उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और खासकर लड़कियों की, जिस वजह से कभी कभी शूटिंग में देरी हो जाती थी या शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती थी। अब कश्मीर में शूट हुआ एक गीत भी आपको सुना देते हैं किशोर की आवाज में, जवानी ओ दीवानी।

आप सुन रहे थे 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। आज हमने बात की है आन मिलो सजना फिल्म के किस्सों के बारे में, और अब चलते हैं इस कार्यक्रम के आखिरी चरण की ओर और आपको सुनाता हूँ एक आखिरी किस्सा। आन मिलो सजना में 6 सुपरहिट गाने थे, जिनमें से ज्यादातर किशोर जी, लता जी और रफी साहब ने गाए, लेकिन इसमें आशा जी के खाते में भी एक गाना आया। यही नहीं, लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल जी, ओम प्रकाश जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। उनके साथ यह पहली फिल्म थी। आम तौर पर ओम प्रकाश जी ने शंकर जय किशन जी के साथ काम किया है, इसी वजह से शंकर जय किशन जैसा अच्छा बनने की जिम्मेदारी पूरी तरह उन पर थी। और लक्ष्मीकांत जी और प्यारे लाल जी कहते हैं यह उनके लिए बहुत सम्मान की बात थी। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा और आपको छोड़े चले जाऊंगा आशा भोंसले जी के गाए हुए इसी फिल्म के नटखट गीत के साथ, पलट मेरी जान। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से, लिखा आरजे सेजल ने, प्रस्तुतकर्ता व रिकॉर्डिस्ट दीपक कुमार, निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की पेशकश।

आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता। अंबाला कैंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

पेश है कार्यक्रम परिचर्चा एपिसोड 3। हमारे आज के मेहमान हैं श्रीमान विशाल शर्मा डार्ली। प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी।

0: आप सभी का स्वागत है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। लेके आया हूं कार्यक्रम परिचर्चा, जिसमें हम बात करते हैं कला की, संस्कृति की। तो आज आपको मिलवाता हूं एक अभिनेता निर्देशक से, जिनके रूह में बसा है अभिनय, जो इस कला की पूजा करते हैं और इस कला ने इनको देश विदेश में एक पहचान दी है। हमारे देश के नेशनल टेलीविजन पर अभी अभी संपन्न हुआ टीवी सीरियल जनूनियत में एक पिता की भूमिका इन्होंने निभाई है, जो दर्शकों को बेहद पसंद आया और पूरे देश ने बहुत सारा प्यार इनको दिया। आइए स्वागत करते हैं आज के आमंत्रित मेहमान श्री विशाल शर्मा जी का, जिनको विशाल डार्ली के नाम से भी जाना जाता है। सर, आपका स्वागत अभिनंदन FM 90.0 MHz स्टूडियो में।
1: नमस्कार भारत जी, और बताइए कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छा हूं सर, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूं, और आपके स्टूडियो में आकर तो और भी अच्छा लग रहा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और आज हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे स्टूडियो में आए, और हमारा स्टूडियो आज पावन हो गया आपके आने से।
1: ये तो मेरी खुशकिस्मती है जी कि मुझे आपने यहाँ बुलाया और मैं यहाँ आया।
0: सर, इस कार्यक्रम में हम एक संक्षिप्त सी बात करते हैं आपके साथ, और जितने हमारे श्रोता है वो इच्छुक होंगे आपके बारे में जानने के लिए। आपको उन्होंने स्क्रीन पर देखा, एक किरदार में देखा, पर आज हमारे साथ बलजीत मेहता नहीं है, बल्कि आज हमारे साथ है श्री विशाल डार्ली जी। तो हम चाहेंगे कि आज हम विशाल जी से उनके दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे, और जो प्यार लोगों ने टीवी स्क्रीन पर बलजीत मेहता जी को दिया है, और वही प्यार आज वो निछावर करना चाहते हैं श्री विशाल शर्मा जी से, जिनको विशाल डार्ली के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना परिचय कृपया हमारे श्रोताओं को दें, ताकि वो आपके बारे में और जान सके और आपके दिल तक पहुंच सके।
1: भारत जी, ऐसा है कि एक तो आपने बता ही दिया, मेरा नाम है विशाल शर्मा, मैं बेसिकली पंजाब से हूं, पंजाब के जलंधर शहर से
0: जी।
1: और जो मेरा ये सफर है, ये बचपन से शुरू हो गया था
0: जी।
1: बचपन में मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में फिफ्थ क्लास में पढ़ता था, तब मैंने पहली बार स्टेज पे एक स्किट की थी स्कूल की ओर से
0: जी।
1: तो तब लगा कि कुछ करना चाहिए। फिर हमारे एक जलंधर दूरदर्शन में थे श्री सुरेंद्र साहनी जी, वो प्रोड्यूसर थे वहां पे, तो उनका एक सीरियल आता था, तो पंजाब में तब पहला हिंदी सीरियल शुरू हुआ था सांवली
0: जी।
1: तो उसमें उन्होंने मुझे, तब मैं शायद सेवंथ या एट में पढ़ता था, तो मुझे एक छोटा सा रोल दिया था उसमें। मुझे आज भी याद है, मैं उसमें चोर बना था और उसमें मेरा नाम था महेशी, मुझे अभी भी याद है वो दिन
0: जी।
1: तो वो मेरा पहला ऑन स्क्रीन था जिसमें मैंने कैमरा फेस किया था पहली बार। तो वो उसके बाद एक और मैंने किया ऐसा ही छोटा सा रोल। फिर धीरे धीरे ये मेरी ये एक्टिंग वाला काम तो हुआ नहीं। फिर ऐसे हुआ कि जब मैं, फिर पढ़ाई चलती रही, कॉलेज चले गए, कॉलेज में थिएटर नहीं किया
0: जी।
1: तो ये मेरी जर्नी यहां से शुरू हुई। तो एक्टिंग तो मुझे थी कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे ना मेरा वो एक्टिंग वाला जो स्किल था वो छूट गया, क्योंकि मेरा रुझान डायरेक्शन में चला गया
0: कि किसी चीज को अगर हाँ, स्क्रीन पर दर्शाना है तो उसके पीछे जो भी सारी जानकारी है उस तरफ आपको ध्यान।
1: वो ऐसा हुआ ना, वो भी ऐसा हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। सुरेंद्र साहनी जी थे, उनकी ट्रांसफर हो गई दिल्ली में
0: जी,
1: दिल्ली दूरदर्शन में, सीपीसी दूरदर्शन बना था तब, सेंट्रल प्रोडक्शन सेंटर
0: जी।
1: तो वहां वो थे, तो उन्होंने मुझे पंजाब से बुलाया वहां पे, कि एक उन्होंने पत्थर बोलते हैं
0: जी,
1: निरंजन देसाई जी का था वो
0: जी।
1: तो उसपे मुझे एक छोटा सा पार्ट प्ले करना था कॉलेज स्टूडेंट्स का,
0: स्टेज पर
1: नहीं,
0: स्क्रीन पर,
1: स्क्रीन पे दूरदर्शन के लिए
0: जी।
1: तो मैंने किया, तो वहां मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा, मेरा इंटरेस्ट बना कि मुझे डायरेक्शन सीखनी है। तो फिर मैंने उनको अपना गुरु बना लिया, लगा जी आप मुझे इसमें डालो। फिर मेरा पहला कांटेक्ट पड़ा था दिल्ली दूरदर्शन में एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट
0: जी।
1: तो वहां से मेरी फिर डायरेक्शन वाली जर्नी शुरू हुई, वहां से मैंने सीखा, बहुत काम किया सर, दिन रात लगाया वहां सीखने के लिए। तो ऐसे मेरी ये जर्नी फिर डायरेक्शन की शुरू हुई।
0: विशाल सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जब हमारे मन में कोई इच्छा हो कुछ करने की, कुछ अलग करने की, तो जब उसका रास्ता मिलता है तो वो अनुभव उस समय कैसा होता है? क्योंकि जो अवस्था है वो किशोर अवस्था है, ये आगे किस तरफ हमें लेके जाए, तो वो उस समय की आपकी फीलिंग कैसी रही होगी?
1: सर वो ऐसे है कि देखो, अब मेरा इंटरेस्ट तो था इस फील्ड में, एक्टिंग में था, लेकिन जब मुझे मैंने देखा ना कि डायरेक्शन में जब मैंने उनको काम करते देखा, तो मेरे मन में आया कि ये सीखना चाहिए, और परमात्मा की दया से वो रास्ते भी निकलते गए
0: जी।
1: जब वो रास्ते निकलते हैं तो आपको लगता है कि अब आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, आप कुछ सीख जाओगे, तो ऐसा मैंने किया। गॉड ग्रेस, मुझे जो मेरे गुरु थे वो भी बड़े अच्छे मिले, उन्होंने मुझे हर जगह आगे रखा, मुझे साथ रखा, मुझे सिखाया, ऐसे चलता रहा। और मैं तो कहता हूं कि लोगों को कि अगर परमात्मा रास्ता दिखाता है, चलना आपने है, आप कैसे चलते हो, और वो आपको कहीं ना कहीं लेके जरूर जाएगा। देखो वो मुझे एक बात याद आ रही है कि बंदा एक चीज मन में बार बार बार बार बार बार सोचता रहे, सोचता रहे, सोचता रहे, सोचता रहे, तो आपको वो वहां पहुंचा भी देती है वो चीज।
0: तो अगर इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में रखूं कि ऐसे कहा जाता है कि हमें अपनी जिंदगी में सपना देखना जरूर चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जब आप सपना देखेंगे, अपना एक आप एक चीज बुनेंगे मन में, तो उसके लिए आप प्रयत्न करेंगे और वो सपना पूरा हो जाता, क्या ये सही है?
1: बिल्कुल सर, अगर आप सपना ही नहीं देखोगे, आपको आपका एक गोल ही नहीं होगा। आपको सपने में तो आप सपना देखोगे तो आप उसको पूरा करने की कोशिश करोगे ना
0: जी,
1: तो सपना तो आना चाहिए ना।
0: तो इसके साथ ही जुड़ा एक और प्रश्न करना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, अगर हम वो कोशिश करते, कोई गलती करते, तो क्या वो गलती हमें और अच्छाई की तरफ ले जाती है या वो हमें निराश करती है?
1: नहीं, गलतियां हमेशा सिखाती हैं। जब बंदा गलती जो हो जाती है ना, उससे बंदे को सीख लेनी चाहिए गलतियों से। आप कहते ना इंसान गलतियों का पुतला है, तो आप गलतियों से सीखते हो, और अगर आप गलतियों से नहीं सीखे फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। गलती एक बार होगी, दो बार होगी, तीसरी बार वो गलती
0: नहीं होनी चाहिए।
1: तीसरी बार वो गलती नहीं होती
0: जी,
1: वो कुछ और ही हो जाता है फिर वो गलती नहीं होती, गलती एक या दो बार ही होती है।
0: यानी कि उससे जब हम सीखते हैं तो हम अगली बार कोशिश करते हैं कि हाँ, उस गलती को हम सुधारें।
1: बिल्कुल,
0: उसको सुधार के हम आगे चलते हैं। अगर वहां फिर एक और गलती हो जाती है, उसको भी सुधारने का ऑप्शन है, पर एक ही गलती बार बार नहीं होती।
1: ना ना ना, फिर वो गलती नहीं रहती जी।
0: इसके साथ जुड़ा एक और प्रश्न मैं करना चाहूंगा और हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, कला और संस्कृति के साथ आप कब से जुड़े हैं? थिएटर और एक्टिंग आपकी जिंदगी के लिए क्या मायने रखता है?
1: देखो जी, मेरे जो मैं अपनी फीलिंग बताऊं तो थिएटर जो है, थिएटर और हमारे टीवी में
0: जी
1: बहुत फर्क है
0: जी।
1: थिएटर एक आर्टिस्ट को, थिएटर बंदे को करना चाहिए, तो थिएटर से बंदा पॉलिश होता है, उसके अंदर का एक्टर बाहर आता है, उसको सीखने को मिलता है। लेकिन हमारे माध्यम और थिएटर के माध्यम में सिर्फ ये फर्क जरूर है कि थिएटर जो है वो हमेशा वो लाइव होता है
0: जी,
1: और उसमें कोई रीटेक नहीं होता
0: जी।
1: लेकिन हम जब टीवी पे करते हैं तो आपके पास ये चांस होता है कि आप उसको रीटेक कर सकते हो। और थिएटर ये होता है कि थिएटर आप पब्लिक के सामने करो, थोड़ा लाउड होता है, उसमें हर चीज, उसमें आपकी वॉइस भी लाउड रहती है, उसमें एक्सप्रेशंस भी लाउड रहते हैं। लेकिन टीवी में कैम माइक आपके यहाँ लगा है, आपको लाउड होने की जरूरत नहीं, वो खेलना और ये चीज थोड़ा फर्क है। लेकिन थिएटर करना बहुत जरूरी है, थिएटर करने से ही आदमी एक अच्छा एक्टर बन के बाहर निकलता है। मेरे हिसाब से थिएटर करना चाहिए।
0: अभी आपने कहा कि आपने जब अभिनय करना शुरू कर दिया, अभिनय के बदले आपका जो ध्यान है और निर्देशन की ओर गया, अभिनय और निर्देशन में आप क्या अंतर समझते हैं?
1: देखिए, एक चीज ये है कि निर्देशक जो है, जैसे डायरेक्टर जो है, वो कैप्टन ऑफ द शिप है
0: जी।
1: उसके दिमाग में पहले ही एक पिक्चर बन जाती है, एक स्क्रिप्ट आती है, जो बेस है हमारा, एक स्क्रिप्ट आई, स्क्रिप्ट को पढ़ा, स्क्रिप्ट के हिसाब से उसके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि इसको मैंने कैसे प्रेजेंट, मेन क्या है डायरेक्शन में, क्या है कि हाउ टू टेक, आपके मन में क्या है, आप उसकी टेकिंग कैसे करते हो, प्रेजेंटेशन है कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो चीज को, आपने एक एक सीन को आपने कैसे ब्लॉक करना है, ये एक डायरेक्शन के दिमाग, एक डायरेक्टर के दिमाग में रहती है ये पिक्चर
0: जी।
1: और एक्टर ये है, एक्टर डायरेक्टर के हाथ की कठपुतलियां हैं, जैसे वो कहेगा। इसलिए मुझे लगा कि डायरेक्टर बनना चाहिए सही मायने में
0: उस कठपुतली की वजह से कोई खींच ना ले
1: तो थोड़ा सा ये रहता ना, तो उस वजह से मुझे लगा कि मुझे डायरेक्शन करनी चाहिए। और फिर मैंने किया, बहुत सीखा। पहले मैं असिस्टेंट लगा, फिर चीफ असिस्टेंट हुआ, फिर एसोसिएट डायरेक्टर हुआ, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्शन की।
0: इस विषय पे हम आगे बात जरूर करेंगे, क्योंकि जितने काम आपने निर्देशक के तौर पर किए हैं उस विषय पे हम बात करेंगे। बट यहाँ मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न आता है, वो ये कि आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब आप कोई भी चीज को निर्देशित करते हैं, तो एक तरीके से जो आपने करना है उस पिक्चर को आप पहले ही मन में देख लेते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और आपकी क्या ऐसी सोच होती है कि मैंने उस तरीके से इस चीज को दर्शाना है स्क्रीन पे, ताकि एक आम दर्शक को वो समझ आए, वो स्टोरी हो, उस कहानी हो, तो इसका मतलब एक आधार क्या है एक निर्देशन, एक निर्देशक के लिए, और जो उसका दर्शक है उसके लिए एक माध्यम क्या होता है?
1: माध्यम तो सर, माध्यम तो ये टीवी है ही है, लेकिन उसमें ये है कि हम क्योंकि मैं बात करूंगा ज्यादा टीवी की, क्योंकि मैंने टीवी में काम ज्यादा किया और थिएटर मैंने इतना किया नहीं। लेकिन इसमें ये रहता है कि आप के दिमाग में जो पिक्चर आपको कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे आप उसमें अपने करेक्टरों को कैसे ढालते हो, जिसकी वजह से सामने वाला दर्शक जो है ना वो उसमें इन्वॉल्व हो। जब तक सामने वाला व्यूअर्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, वो आपकी चीज को क्लिक कर ही नहीं पाओगे आप। अब एक श्रोता है, अब वो उस करेक्टर में जब तक अपने आप को नहीं लेगा ना, तो चीज आपकी हिट तब होती है जब वो अपने आप को इन्वॉल्व करने लगते हैं। हाँ यार, मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मेरे साथ
0: ऐसा हुआ है।
1: वो इन्वॉल्वमेंट जब होती है ना, वो वही चीज डायरेक्शन यही है कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो और लोगों को कैसा लग रहा है उसमें।
0: जी,
1: लोगों के दिल को छू गई बात
0: जी,
1: तो वो चीज तो
0: बिल्कुल बढ़ने वाली है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: एक निर्देशक के तौर पर आप अभिनेताओं को, खास करके जो नव युवक अभिनेता है, उनको आप क्या अपनी ओर से संदेश या एक मैसेज, ऐसी बात कहना चाहें जिनसे वो इस प्रोफेशन को आगे आने वाले दिनों में उसको बना सके?
1: देखिए भारत जी, ऐसी बात है कि जो आजकल चल रहा है ना, आजकल क्या है कि एक बंदा थोड़ा सा कहीं काम करता है तो उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा एक्टर बन गया। लेकिन ये हमारी लाइन ऐसी है, कोई भी पूरी तरह से पूरा परिपक्व नहीं हो पाता
0: जी।
1: इसके लिए ये है कि, और क्या चल रहा है कि अभी मैं आपको बताता हूं कि अभी क्या होता है कि पंजाब में या कहीं भी कुछ भी काम किया, थोड़ा सा थिएटर ही कर लिया, उसको लगा कि अब मैं एक्टर हो गया हूं, वो पहले अपनी उड़ान लेता मुंबई में।
0: वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है,
1: एक काम ही किया तो उसको लगता कि मैं एक्टर बन गया, ये क्या इसमें क्या मुश्किल है, तो वो निकलता है मुंबई में और घर वालों को ये इतना बड़े सब्ज बाग दिखा के जाता कि मैं तो अब एक्टर बन जाऊंगा। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। तो वहां मैं आपको बताऊं, वहां कम से कम 2000 बंदा रोज उतरता है एक्टर बनने के लिए
0: जी।
1: तो उसमें 2-4 ही बन पाते हैं, बाकी क्या, बाकी की जिंदगी क्या होती है, वो वापस तो आ नहीं सकते क्योंकि घर पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो उनकी जिंदगी वहीं पर सिमट जाती है, तो उनको कहीं कैसे काम करने पड़ते हैं। इसलिए मैं आज की जनरेशन को ये कहना चाहता हूं, पहले अपने आप को पहचानो, पहले देखो आप कहां तक पहुंच गए, क्योंकि ये तो इंडस्ट्री ऐसी है, बंदा रोज सीखता है, हर रोज सीखने को मिलता है, क्योंकि हमारी लाइन ही एक ऐसी जो टाइप नहीं है
0: और जो हर दिन बदलती
1: है, हर दिन बदलती है, टाइप है ही नहीं, रोज नया। अब कोई नौकरी वाला बंदा, वो सुबह जाएगा ऑफिस, शाम को आएगा, उसकी टाइप लाइफ है कि यहां सुबह गए, कोई डॉक्टर है उसने पता डॉक्टर शाम को सुबह तक गए ऑपरेशन किया ये किया, हमारी लाइन रोज नहीं है, रोज नया है, नया एडवेंचर है, नया कुछ सीखने को है, हर चीज नई कुछ। तो इसलिए मैं वो नई जनरेशन को यही कहना चाहता हूं कि आप पहले अपने आप को पहचानो, क्योंकि अगर आप कर रहे हो तो आपके अंदर का एक इंसान जो है ना, जो अंदर एक बंदा बैठा ना, वो सही गवाही देता है
0: जी।
1: लेकिन आप उसकी ना सुन के सीधा अपनी करने लगते हो ना, तब बंदा फंसता है
0: जी।
1: बाकी ये जो है, ये
0: तकदीर, जो
1: तकदीर है वो बहुत काम करती है। आपकी तकदीर ने अगर आपको वहां लेके जाना तो वो तो जरूर ले जाएगी, लेकिन अपने आप को पहचानने के बाद ही उस जगह चलो, करो मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे वो परमात्मा जरूर साथ देता है जी। वो उसको, उसकी कैलकुलेशन इतनी जबरदस्त है ना, हम लोग सोच नहीं सकते कि वो क्या कैलकुलेट करके बैठा आपको, आपको कहां से कहां ले जाना उसने, उसको पता है।
0: पर जो हमें पहले करना काम अपना है, सीखना है,
1: वो
0: उसको पूरी तरह से सीखें, फिर आपकी मन गवाही देगा कि अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, आगे कदम उठाने के लिए तैयार हूँ, तब ही
1: उठाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा उसमें आप पूरी तरह आओ तो सही ना उसमें।
0: आपके साथ बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है सर। और आइए हम थोड़ा सा डाइवर्शन लेते हैं। जैसे आप अभिनेता है, जैसे आप निर्देशक है, आपने बहुत सारा काम किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप संगीत के साथ ना जुड़े हों। तो मैं चाहता हूं कि आपकी कोई पसंद का कोई गाना जो हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे, और आप कृपया उसके बारे में बताएं कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं।
1: नहीं नहीं जरूर, क्योंकि म्यूजिक जो है ना वो तो एक मेन फैक्टर है हमारी जिंदगी में भी और हमारी इंडस्ट्री में भी। तो ऐसे है, गाने तो बहुत है, लेकिन एक गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आइए श्रोताओं, आपको विशाल सर का ये पसंदीदा गाना सुनाते हैं, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सब कुछ

0: मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, लेके आया हूं कार्यक्रम परिचर्चा। आज बात कर रहे हैं श्री विशाल शर्मा जी के साथ, और जिनको विशाल डार्ली के नाम से भी जाना जाता है। सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने अलग अलग राज्यों में टीवी के लिए टीवी सीरियल्स का निर्माण किया है एक निर्देशक के तौर पर, कैसे याद करते हैं उस समय को, और क्या कुछ खास लोगों की याद भी आती है?
1: हाँ, ये जब मैं डायरेक्शन में आया, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने दिल्ली दूरदर्शन में मैं एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट शुरू किया थी मैनेजर
0: जी,
1: वहाँ कुछ प्रोग्राम्स किए। फिर मैं एक प्रोग्राम आता था हार्ट टू हार्ट, वो एक डिस्कशन प्रोग्राम था, वो
0: मतलब दिल से दिल तक।
1: हाँ, वो सुरेंद्र साहनी जी ने किया था
0: जी,
1: तब मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट था। उसके बाद फिर ऐसे ही जर्नी चलती रही, कई प्रोग्राम बनाए, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। वो दिन इसलिए याद आता है क्योंकि एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट सबसे पहली बार मेरा कैप्शन गया था,
0: जो स्क्रीन पे आपका
1: नाम आया था
0: जी।
1: तो इसलिए वो चीज मैं कभी नहीं भूलता कि जब पहली बार मेरा नाम आया था। फिर मैंने फीचर फिल्में की पंजाबी
0: जी,
1: तो उसमें मैं चीफ असिस्टेंट बना। एक थी फिल्म पुर्जा पुर्जा कटमरे
0: जी,
1: उसमें गुग्गू गिल, उपासना सिंह, दीप ढिल्लो, ये सारे थे। फिर एक वो डायरेक्ट की थी सुरेंद्र साहनी जी ने। फिर एक फिल्म की थी दिलदारा, उसमें मैं एसोसिएट था, तो उसमें कुलभूषण खरबंदा, तनुजा जी, सईद जाफरी, ये सब कलाकार थे। तो बड़ा अच्छा लगा काम करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मेरे गुरु थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, सुरेंद्र साहनी जी, उन्होंने बहुत मुझे सिखाया। तो ऐसे सीखते, क्योंकि मुझे इसलिए याद है क्योंकि तब डिजिटल नहीं था, फिल्म पे काम होता था
0: जी,
1: तो वो नेगेटिव पे काम होता था, मैगजीन पे,
0: उसके बाद
1: उसको पॉजिटिव होता है, वो बड़ा लंबा प्रोसेस था, लेकिन उससे बंदे को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा, मुझे याद है कि, और एक वो दिन नहीं कभी मैं बोलता जब मैं पहली बार मैंने कैमरे के पीछे खड़े होकर पहली बार एक्शन बोला था, वो बड़ा याद आता वो दिन, क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्शन दे रहे हो और पहली बार आपके मुंह से एक्शन निकलता है, डायरेक्टर के लिए तो सबसे बड़ी बात,
0: बहुत बड़ी बात होती है
1: कैमरा रोल और एक्शन जो है ना, वो जब पहली बार मैंने एक्शन बोला, तो वो एक NRI सभा की एक फिल्म थी
0: जी,
1: इसका नाम था मिट्टी की महक, मिट्टी दी महक, उसमें हमने कुछ ड्रामा किया था, ड्रामा तो उसमें कुछ आर्टिस्ट लिए थे, तब मैंने पहली बार एक्शन बोला था। तो वो हमारे हैं पंजाब के एक बहुत बड़े राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सतनाम चाना जी,
0: जी
1: वो राइटर भी हैं बहुत बड़े, उन्होंने वो फिल्म लिखी थी। फिर ऐसे करते करते मैंने एक सोनालिका ट्रैक्टर्स वालों के लिए फिल्म बनाई थी
0: जी,
1: ऐसे बहुत काम किए। फिर वहां से मेरी जर्नी एज ए डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुरू हुई। तो फिर कॉमेडी बनाई, सीरियल बनाए मैंने, काशीर दूरदर्शन के लिए
0: जी,
1: काशीर के लिए, शिमला दूरदर्शन के लिए, जालंधर के लिए, कई जगह के लिए फिर मैंने काम किया। तो ऐसे करते करते फिर एक हमारे पंजाब में आता छनकाटा
0: जी,
1: छनकाटा 2004 और 2005 वो मेरे डायरेक्ट किए हुए हैं
0: जी,
1: उसमें जसविंदर भल्ला जी जो चाचा चतुर सिंह के नाम से बड़े मशहूर
0: हुए,
1: अब तो वो फिल्मों में उनके पास टाइम ही नहीं, फिल्में इतनी कर रहे हैं
0: जी,
1: तो उनके साथ भी काम किया, बड़ा अच्छा लगा, वो मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्शन दी। तो वो चीजें मैं कभी नहीं भूलता, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो टाइम, अब भी है, अब उससे और आगे बढ़ रहे हैं।
0: आपने सर अभी जसविंदर भल्ला जी का नाम लिया, मेरे बहुत ही पसंदीदा कलाकार है वो, आप उनके बारे में जो उनकी खासियत है, विशाल सर तुम पंजाब च दस सकते हो उनकी खासियत जो है वो क्या है?
1: उनकी खासियत सबसे बड़ी ये है कि वो एक तो वो खुद लिखते हैं
0: जी,
1: सबसे बड़ी बात, कॉमेडी लिखना
0: आसान नहीं होता है
1: जी, और वो खुद लिखते हैं, और उनको ना आप उनके साथ बैठे बात भी करोगे ना, उनको बातें ऐसे निकलती हैं उनके अंदर से, और कॉमेडी निकलती है उनके अंदर से, क्योंकि हम तो रहते थे, हम तो इकट्ठे 10-10, 15-15 दिन स्क्रिप्ट पे काम करना, उन्होंने लिखना, फिर उन्होंने सुनानी, 10 बार चेंज करनी, लेकिन ऐसा था कि जब तक हम सेट पे नहीं पहुंचते ना, जब तक हम फ्लोर पे नहीं पहुंचे शूट के लिए, तब तक भी स्क्रिप्ट चेंज होती रहती थी, क्योंकि मन में नया आइडिया आ गया उन्होंने उसी टाइम। ये उनकी बहुत खासियत है कि वो स्क्रिप्ट पे बहुत वर्क करते हैं और लिखते बहुत अच्छा है।
0: क्या हम ये माने कि जब एक चीज आप तैयार करते हैं और जब वो स्क्रीन पे आता है एक दर्शक के लिए, एक क्षण में वो सीन निकल जाता है, तो कितनी मेहनत उसके पीछे होती है और कितनी बार आप डिस्कस करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, ताकि जितने भी हमारे इस समय इस प्रोग्राम के श्रोता है, जब वो स्क्रीन पर आपको और आपके काम को देखते हैं तो उनको ये अंदाजा हो कि उसके पीछे कितनी मेहनत होती है।
2: और बहुत मेहनत होती है और बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं साथ में, हर एक की मेहनत है। देखो ये हमारी ये जो काम है ना, ये जो हम फिल्म बनाते हैं या कुछ भी, ये एक टीम वर्क है। अकेला बंदा कुछ नहीं, चलो एक डायरेक्टर है उसको पता क्या बनाना है, लेकिन एक पूरी टीम, कैमरामैन, फिर लाइट्स मैन, स्पॉट बॉय, हर एक का अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है और उससे फिल्म बनती है।

0: एक आध बार लगा है कि इसको ऐसा कर सकते थे, पर लेकिन कई बार क्या होता है भारत जी, वो क्या है कई बार आपकी कुछ लिमिटेशंस ना आपको वो चीजें नहीं करने देती
1: है।
0: लिमिटेशन जो आती है ना कई चीजों में।
1: ठीक ठीक है। जहां तक हमने आज तक इस प्रोग्राम में बात की है, तो या तो वो एक्टर रहे या उन्होंने अलग अलग जो किरदार है वो निभाए हैं, आज हम एक निर्देशक से बात कर रहे हैं। एक नया ही आयाम मुझे सुनने को मिला और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक है उनको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ जुड़ा हुआ एक और प्रश्न करता हूं आपसे।
0: जी जी।
1: आप जब अभिनय करते हैं, क्या आपके अंदर का निर्देशक बीच में आता है?
0: हाँ, कई बार कोशिश करता आने की, लेकिन उसको आने नहीं देना।
1: आने नहीं देते, क्योंकि उस समय जैसे आपने कहा निर्देशकशिप
0: चक्कर क्या होता है सर, ऐसे है कि जब मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूं कोई चीज
1: जी,
0: तो मुझे पता कि मैंने उसको क्या दिखाना है। मेरे दिमाग में पिक्चर है, अब जो मेरे दिमाग में पिक्चर है वो जरूरी नहीं कि आपके दिमाग में वो पिक्चर हो
1: जी।
0: मैंने कुछ सोचा है, जब मैं अपने काम जब करता हूं तो मुझे पता कि मुझे क्या दिखाना है, कैसे करना। अब मैं एज ए एक्टर जा रहा हूं तो मेरे डायरेक्टर को पता है उसने क्या दिखाना है, इसलिए वहां पे कोई निर्देशक नहीं आड़े आना चाहिए।
1: वो उस समय वो कठपुतली होती है जिसकी डोरी
0: बिल्कुल
1: निर्देशक पे होती है, जब चाहे वो उसको खींच सके।
0: मैं तो सबको यही कहता हूं कि अगर जो मुझे लगता है कि जब भी आप किसी की डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो आपको उसके हिसाब से ही चलना चाहिए जैसे वो चाहते हैं
1: जी,
0: क्योंकि उनको पता है वो उन्होंने क्या आगे भेजना है
1: जी,
0: तो इसलिए आपको उनके हिसाब से ही चलना चाहिए, अपनी नहीं बीच में डालनी चाहिए कि ऐसे नहीं ऐसे।
1: मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी सीख है, अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं और अगर हम अभिनेता के तौर पर काम करते हैं, जो उस समय वो निर्देशक, उस समय का निर्देशक जो भी आपको करने के लिए कहे, आपको उसमें अपना 100% देना चाहिए।
0: नहीं, वैसे मैं भारत जी आपसे पूछता हूँ एक चीज, आप भी प्ले करते हो, डायरेक्ट भी करते हो
1: जी,
0: तो जब आप प्ले करते हो तो आपको कैसा लगे कोई बीच में आके आपको बहुत बोले नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे करो?
1: सर, मैं आपसे अपने दिल की बात पूछी और जो मेरे मन में सवालों के जवाब थे वही जवाब आपने दिए। हाँ, इतना जरूर हम करते हैं, अगर कोई हमारा कलाकार ही कहे कि सर आपने कहा इसको ऐसे करें, ऐसे ना करके हम इसको ऐसे करें, अगर वो मुझे अच्छा लगता है
0: फिर तो
1: मैं साथ ही स्वीकृति देता हूं कि हमें ऐसा ही करना चाहिए।
0: वो करना चाहिए, वो एक सुजेशन अलग चीज है, लेकिन थोपना अलग बात होती है।
1: हाँ नहीं नहीं, अगर तो हम कोई चीज निर्देशन करते हैं किसी चीज का, हम यहाँ रेडियो में प्रोग्रामिंग करते हैं और अगर हमारा जो साथी वो कोई ऐसी बात कर देता है या वो किसी और तरीके से बात कर देता है तो हम उसको वहीं कट करके उसको दोबारा से करने की कोशिश करते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: कि वो भी निर्देशक नहीं हो सकता है जो दूसरे के कहने पे निर्देशन करे, तो ऐसा भी नहीं होता है। अगर हम निर्देशन करते हैं तो हमारी एक टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन के आगे पीछे हम
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: मैं विशाल सर आपसे अपने मन के जो सवालात है उनके जवाब आपके थ्रू ढूंढ रहा हूं,
0: क्योंकि वो चक्कर क्या होता है सर, जैसे जो प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट उस डायरेक्टर के लिए उसका एक बेबी है
1: जी,
0: उसको कैसे करना है क्या करना उसके दिमाग में है, तो इसलिए कोई भी डायरेक्टर ये नहीं चाहेगा कि मैं अपना जो बेबी है या जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको, वो तो चाहेगा जितना अच्छा हो सके। मैं तो यही कहूंगा कि आप जिस भी डायरेक्टर के अंडर काम कर रहे हो उसकी स्वीकृति से ही सब काम करो।
1: यहाँ पर विशाल सर हमारे पास एक और गाने की गुंजाइश है और हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं कि विशाल सर की अगली जो मनपसंद गीत वो कौन सा होगा, ताकि हम भी थोड़ा सा ब्रेक लें और हम अपने श्रोताओं का भी मनोरंजन करें।
0: तो सर वो गाना तो मेरा ख्याल सबका ही चाहने वाला गाना है, क्योंकि वो हम आर्टिस्टों के लिए ही बना है वो गाना
1: जी,
0: तो जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना का।
1: आइए श्रोताओं, सुनाते हैं आपको राज कपूर जी का गाना जीना यहाँ मरना यहाँ, और हम अभी वापस आते हैं, आप बने रहिए।

0: आपने ट्यूनिंग किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिचर्चा। आज हमारे आमंत्रित मेहमान है एक्टर डायरेक्टर श्री विशाल शर्मा जी, जिनको विशाल डार्ली के नाम से भी जाना जाता है। ये इस प्रोग्राम का अंतिम भाग है। विशाल सर, आपसे जानना चाहते हैं कलर्स के सीरियल जुनूनियत का सफर कैसे शुरू हुआ और इसमें आपके परिवार का क्या योगदान रहा?
1: सर, ऐसे है कि योगदान की बात करें तो इसमें योगदान ही मेरी वाइफ का रहा।
0: जी,
1: मेरी वाइफ अंजना शर्मा, वो टीचर हैं स्कूल में, जलंधर के APJ स्कूल में पढ़ाती हैं, आर्ट टीचर हैं। मैं एक्टिंग नहीं करता था, मैं डायरेक्शन में था
0: जी।
1: तो उन्होंने मुझे कह के कि आप एक्टिंग क्यों नहीं करते, आपका फेस भी आप कर लोगे, आप करवाते हो तो कर भी लोगे, आप एक्टिंग करो
0: जी।
1: तो उस दिन अचानक ही मुझे मैसेज आता है इंद्र का
0: जी,
1: कि आप ना सर, आपने एक ऑडिशन भेजो, एक DD नेशनल के लिए कोई शो है, उसके लिए ऑडिशन भेज दो आप
0: जी।
1: तो मैंने भी वैसे ही चलो यार भेज देते हैं, ऐसे आया मन में कि भेज देते हैं। तो मैंने वो जी ऑडिशन बना के भेज दिया। अब अगले दिन मुझे फोन आ रहा है कि आपकी सिलेक्शन कलर्स चैनल के इस शो के लिए हो गई है और आपको हीरो का फादर प्ले करना है।
0: वाह,
1: मैंने कहा यार ये तो
0: बहुत अच्छी बात हुई।
1: इसमें मैं देखता हूँ कि वो परमात्मा जो है वो क्या करवाता है
0: जी।
1: फिर मैंने उसको किए, मैंने ओके किया। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे मेजरमेंट्स ली, फिर मेरे आए लुक टेस्ट हुए, ये हुआ, ऐसे करते करते जर्नी शुरू हुई। तो देखिए, मैंने डायरेक्शन की है लेकिन काम करवाना और कैमरे के आगे करना दोनों में फर्क है
0: जी।
1: कि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था एज ए एक्टर, कोई छोटे मोटे तो किए थे लेकिन एज ए एक्टर बड़ा और प्राइम टाइम पे शो, और अच्छे एक्टर, वो हीरो अंकित है उसमें और सारे अच्छे एक्टर, और उसमें जो मेरी वाइफ बनी है गुरविंदर कौर जी और वो डॉली इनको बोलते हैं। पर एक बात बताऊं, मेरा सब ने बहुत साथ दिया
0: जी,
1: उन सबकी बहुत साथ था मेरे पास, इसलिए मैं इसको कर पाया। और परमात्मा की देखो है कि जिसकी वजह से लोगों ने पसंद भी किया
0: जी,
1: और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे ये करके बहुत। और हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है ट्रिमायता, इसमें सरगुन मेहता और रवि दुबे जी प्रोड्यूसर हैं, और बहुत बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छी टीम थी उनमें, हमारे क्रिएटिव थे अंकुर भाटिया जी हैं, शर्मन जैन जी हैं, प्रीत जी हैं, सब टीम इतनी अच्छी मिली ना कि इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा ही नहीं कि मैं कैसे, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा माहौल मिला और बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से जर्नी चली और काम हो गया, किया भी।
0: तो मैं ये मानू कि आप इस सफर का श्रेय अपनी धर्मपत्नी को देते
1: हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं तो उसको बोलता हूँ कि भाई तुम्हारी वजह से आज मैं ये कर पाया हूँ, लेकिन उसका बहुत, अंजना शर्मा है, बहुत बहुत उसका, तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: अंजना जी, आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम और मुझे पूरी आशा है कि जब हम किसी सकारात्मक सोच से कुछ निर्णय लेते हैं और उसका जो रिजल्ट है, उसका जो नतीजा है, वो भी सकारात्मक ही होता है। और मुझे बहुत खुशी है कि एक परिवार ही आपस में मिलजुल के किसी भी कार्य को अर्श तक पहुंचाने के लिए काफी होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: आगे चलते हैं सर, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। बड़े स्पेक्ट्रम या बड़े स्क्रीन पर या बड़े लेवल पर और एक टॉप रेटेड TV सीरियल में काम करना कितना सुखद रहा?
1: बहुत, मैंने आपको बताया ना, बहुत मेरे लिए तो एक नया एक्सपीरियंस था और इतना अच्छा रहा कि मेरे को तो इतने अच्छे लोग मिले, मैं बता रहा हूँ कि मुझे, और अच्छे डायरेक्टर, सब लोगों की टीम ऐसी थी कि एक फैमिली बन गई थी। क्योंकि रूटीन में मिलना होता था तो ऐसे लगता था कि हम वो फैमिली। अब वहाँ भी सेट पे आप देखो, सेट पे कोई किसी के नाम से नहीं जानता, उस करेक्टर के नाम से, मुझे वहाँ बलजीत के नाम से बुलाते थे, और जो बच्चे हैं वो कोई चाचा बोलता था,
0: कोई पापा
1: बोलता था, वो ऐसे ही चलता था। तो वो बड़ा अच्छा लगा, माहौल भी अच्छा रहा और काम करने में भी मजा आया।
0: मैंने आपके इस सीरियल को पूरी तरह से फॉलो किया है। एक सीन है जब आप कनाडा से, सीरियल में जब आप कनाडा से बहुत साल के बाद पंजाब वापस आते हैं तो आप जमीन पर हाथ रख के फिर अपने माथे पे लगाते हैं, तो उस सीन में आपकी फीलिंग क्या थी अपने मिट्टी के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने जगह के लिए जो प्यार था वो किस तरीके का था?
1: देखिए उसकी स्टोरी ऐसी थी ना कि मुझे जो था कि मुझे वहां से भगा दिया जाता है इंडिया से
0: जी
1: 20-22 साल पहले
0: जी,
1: मेरे अपने ही भाई और उसकी उसकी बीवी ने मुझे भगा दिया होता है
0: जी,
1: और मेरा बेटा जो वो उसका टारगेट नहीं, उसका तो ये था सपना कि मैं,
0: उसका
1: सपना लक्ष्य ये था कि मैं अपने माँ बाप को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दूं
0: जी।
1: और 22-23 साल बाद जब मैं इंडिया आता हूँ उस पीरियड में, तो उस मिट्टी की जो महक है उसको मैं पहले उसको
0: सूंघ लेते हैं
1: हाँ, तो फिर वो वही वो एकदम से लगता है कि आप देखो 22 साल बाद बंदा अपने मुल्क में आया है, वो तो सीरियल में था तो इसलिए तो
0: नहीं, फिर भी फीलिंग फिर तो सर वही है,
1: तो फीलिंग तो वही
0: थी, धरती में आए हैं
1: और ये चीज थी, तो उसमें आप भी थे, आपके साथ वो सीन किया था मैंने, मुझे याद है
0: जी जी
1: हाँ, तो वो बड़ा अच्छा था, अच्छा लगा।
0: आगे बढ़ते हैं, सीरियल में एक परिवार होता है जिसमें फादर होते हैं, बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं और बहुत सारी स्टोरी होती है। आपने पिता का किरदार निभाया, कितना असर आपके जीवन पर और आपने लोगों के जीवन पर उस किरदार से देखा?
1: मेरे जीवन पर तो उसका असर ऐसे था कि कुछ ना कई बार ना आप रिलेट करने लगते हो अपनी जिंदगी को उस करेक्टर के साथ
0: जी।
1: हमारे साथ होता भी ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा ये था कि उसमें हमें शुरू से दिखाया था कि हम कनाडा में रहते हैं
0: जी,
1: तो ये चीज थी। लेकिन हमारे साथ जैसे उसमें जो मेरी वाइफ बनी है उनके साथ कैसे हुआ, तो उसको हम अपने अपनी फैमिली के साथ रिलेट करते थे कि हमारे साथ फैमिली में कुछ चीजें ऐसी ही होती हैं,
0: तो वो दर्द महसूस
1: वो होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है सर वो जी। तो वो चीज आप रिलेट कर लेते हो, और कई बार परमात्मा आपको वैसा ही दिखाता है कि जो तुम प्ले करके आओ वो तुम्हारे साथ घर में भी ऐसा होता है कई बार अमूमन, तो वो चीज रिलेट कहीं ना कहीं हो जाती है सर।
0: तो लोगों का अपार प्यार मिला इस टीवी सीरियल को, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी अपने आप को किसी न किसी दृश्य में शायद महसूस करते होंगे।
1: हो सकता है क्योंकि बंदे जुड़ते ही तब हैं जब वो अपने आप को उसमें महसूस इन्वॉल्व होते हैं उस करेक्टर के साथ। अब आप देख लो जो सीरियल बड़े हिट जा रहे हैं वो इसीलिए हिट जा रहे हैं कि लोग उनमें अपनी पिक्चर देखने लग जाते हैं,
0: अपने आप को देखते हैं
1: कि हाँ ये तो मेरे साथ भी ऐसे होता है,
0: ये तो मेरी ही कहानी है।
1: वो होती है, वो चीज तो है सर।
0: एक और बात जानना चाहता हूँ इस कलर्स पर, जो सीरियल जनूनियत अभी संपन्न हुआ, कोई ऐसा क्षण जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हैं?
1: अरे ऐसे देखो क्षण तो ऐसे बहुत होते हैं, जब आप काम करते हो तो बहुत से ऐसे चीजें आती हैं सामने, ऐसे तो बहुत है, लेकिन एक ऐसा माहौल ऐसा बन जाता है ना जब आप एक टेलीशॉप करते हो तो उसमें आपको अपना परिवार ही लगता है सब चीजें। अब मुझे याद है कि जब हमारी ये रैपअप पार्टी थी
0: जी,
1: तो उसमें मोस्टली जो करेक्टर थे वो बड़े उदास थे
0: क्योंकि
1: अचानक बंद हो गया,
0: क्योंकि ये परिवार जो है अलग हो रहा है
1: अचानक बंद हो गया, तो मैं देख रहा था कि मैं खुद भी बड़ा इमोशनल हो गया था उस दिन। सब लोग बहुत इमोशनल थे कि ये एकदम से बंद हो गया, और इतना बढ़िया बॉन्डिंग चल रही थी, इतना क्योंकि देखो सर हम महीने में कितने दिन तो हम इकट्ठे रहते थे
0: जी।
1: 12 दिन इकट्ठे रहना और वही फैमिली माहौल, वही जब आना भी आपने तो सेट पे आना किसी ने हाँ जी चाचा जी पापा बलजीत जी ऐसे जो सबके साथ ऐसे, तो वो थोड़ा सा उस वक्त हुआ, लेकिन चलो पार्ट ऑफ लाइफ,
0: जिंदगी है
1: इसमें क्या कह सकते हैं,
0: ये जिंदगी है और ये जिंदगी आगे ऐसे ही चलती रहेंगी। अब इस कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हम आपसे इजाजत लेना चाहते हैं, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे श्रोताओं के लिए, खास करके जो अभिनय के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक खास मैसेज, और साथ में उन सभी दर्शकों को आप शुक्रिया धन्यवाद कैसे करेंगे?
1: ऐसे है कि चलो मैसेज मैं तो खुद अभी सीख रहा हूँ जी, चल रहा हूँ इसमें, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, रोज सीख रहा हूँ। और मैं ये सबको कहना चाहता हूँ कि आदमी को, हमारी लाइन ऐसी है कि इसमें रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, अब मुझे, अब मैं जब स्क्रीन पे मैंने देखा कि मैं ये चीज को इससे बढ़िया कर सकता था, अब मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ
0: जी।
1: ये चीजें है ना कि आप अपने आप को जब देखते तो आपको आपके अंदर से आवाज आती है, नहीं ये ठीक नहीं है, ये बढ़िया हो सकता था, वो आपको पता चल जाता है, आप उस पर वर्क करो
0: ताकि अगली बार
1: उससे भी अच्छा हो सके। तो ये चीजें तो होनी ही चाहिए। और बाकी यहाँ आप सबसे, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और दर्शकों को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने अपना एक गोल सेट करो, उस गोल को अचीव करने के लिए पूरे एफर्ट करो, और परमात्मा आपको वो अचीव करवाएगा ही करवाएगा, जरूर करवाएगा। और मैं यहाँ आया हूँ अम्बाला में आपके यहाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपसे मुलाकात हुई, आपने मुझे यहाँ बुलाया, और अब तो मुझे लगता है कि मैं जितनी बार भी निकलूंगा यहाँ से आपके पास तो होके ही जाऊंगा।
0: हमारी खुशी से भी, और आपने इसके साथ ही मेरे आखिरी सवाल का जवाब भी दिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आपका शुक्रिया। आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमारे स्टूडियो को पावन किया, आपने अपने दिल की बात हमारे साथ साझा की जो हम श्रोताओं तक पहुंचा सके, और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और दिल से धन्यवाद देते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूं इजाजत, श्रोताओं को छोड़ देता हूं विशाल सर के एक और पसंदीदा गाने के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: नमस्कार सर, पावन तो आपने मुझे कर दिया आपने यहां बुला के, तो इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहां बुलाया। शुक्रिया, थैंक यू।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिचर्चा एपिसोड 3। हमारे आज के मेहमान थे विशाल शर्मा डारली, एडिटिंग व रिकॉर्डिंग दीपक कश्यप, प्रस्तुतकर्ता व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुक्रिया।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।
1: सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का।

साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, राम रट के।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

दोस्तों बोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रूजियो पनिन पसंदीदा बात।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

यो छ एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अंबा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अंबा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों, अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय।

0: मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सदी तो रुकती नहीं, धड़कता है दिल तो थकता नहीं, बस इतनी सी देखभाल मांगता है, वरना ये किसी को कुछ कहता नहीं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विदस्ता की तरह जिंदगी भी बहती रहती है और उस बहाव को चलाने वाली धारा है हमारा दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस पर आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के नाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देंगे।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। नदी में पानी साफ और बहाव खुला रहे तो किनारे हरे भरे रहते हैं, ठीक वैसे ही दिल में खून का भाव सही रहे तो पूरा शरीर खिला रहता है। हमारा दिल दिन भर में लगभग 1 लाख बार धड़कता है बिना किसी छुट्टी के।
0: जी हां श्रोताओं, आज हम बात करेंगे दिल की और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में रेडियो विदस्ता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अंबाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, उम्र के साथ बदलता भी है। 25 की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने, जो डायरेक्टर हार्ट।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्वा, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपकी रेडियो हम सफर अन्नु, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। सितंबर के अंत में सरसों की बिजाई के लिए अभी से खेत तैयार कर लें किसान। कृषि विशेषकों की सलाह पर बीजो उपचार के बाद करें बिजाई। सरसों रबी में उगाई जाने वाली फसलों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सरसों वर्गीय फसलों के तहत तोरिया, राया, तारामीरा, भूरी व पीली सरसों आती है। सरसों की बिजाई के लिए किसान खेत को अच्छे से तैयार कर लें। सितंबर के अंत में सरसों की बिजाई आरंभ हो जाती है। तिलहनों की बिजाई सिंचित क्षेत्रों में 1 किलोग्राम व बारानी क्षेत्रों में 1.25 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लेकर कतारों में 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बिजाई पोरा विधि से इस प्रकार करें कि बीज 3 से 4 सेंटीमीटर से अधिक गहरा ना पड़े। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज ने बताया कि सरसों को तना गलन रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीज को 2 ग्राम कार्बनडाइजिम नामक दवा से प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। बिजाई के समय सिंचित सरसों में 35 किलोग्राम यूरिया और 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में पोर दें। बाकी 35 किलोग्राम यूरिया पहली सिंचाई के समय डाल दें। बारानी इलाकों में सरसों के लिए 35 किलोग्राम यूरिया व 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट ही चुनें। यदि फास्फोरस डीएपी द्वारा डालें तो खेत को तैयार करते समय ही 100 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ बिखेर कर खेत में मिला दें। यदि जमीन में जस्ते की कमी हो तो प्रति एकड़ बिजाई के समय 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 20 से 25 किलोग्राम सूखी भुरभुरी मिट्टी में मिलाकर खेत को तैयार करते समय मिला दें। राया में एजोटोबैक्टर के टीके का प्रयोग लाभदायक रहता है। सरसों की इन किस्मों की करें बिजाई। सरसों अनुभाग में विशिष्ट वैज्ञानिक डॉक्टर राम अवतार ने बताया कि राया सरसों की RH30, RH8812, RH406, RH749, RH725, RH761, RH1424 और RH1706 व पीली सरसों की किस्म YSH401 ही बोएं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने सरसों की एक और उन्नत किस्म RH1975 विकसित की है। यह किस्म सिंचित क्षेत्र में समय पर बिजाई के लिए एक उत्तम किस्म है। इसके अलावा सरसों की हाइब्रिड किस्म RHH2101 भी सिंचित क्षेत्रों में समय पर बिजाई के लिए विकसित की है। फसल में कीटनाशकों का छिड़काव दोपहर बाद करें। किसान सरसों की बीमारी की समय पर रहते अच्छी तरह पहचान कर उनका आसानी से रोकथाम कर सकते हैं। अगेती व पछेती सरसों की फसल में कई प्रकार की बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, जिनकी किसान समय से पहचान कर रोकथाम कर फसल से अधिक पैदावार हासिल कर सकते हैं। किसान फसल की बीमारियों की रोकथाम के लिए कीटनाशक हमेशा सायंकाल को 3 बजे के बाद करें, ताकि मधुमक्खियों को कोई नुकसान ना हो, जो उपज बढ़ाने के लिए सहायक होती हैं। लहसुन की बिजाई का 15 अक्टूबर तक सही समय। अच्छी किस्मों का चयन करें। कंद बड़े होंगे, जमीन की 2 से 3 बार जुताई करके समतल जरूर कर लें। सर्दियों के मौसम में लहसुन की बेहतर पैदावार लेने के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर 15 अक्टूबर तक लहसुन की बुवाई का समय सबसे उपयुक्त होता है। समय रहते की गई सही तैयारी, उन्नत किस्मों का चयन और उचित प्रबंध न केवल फसल को रोगों से बचाता है, बल्कि कंदों का आकार और वजन बढ़ाकर बम्पर उत्पादन भी सुनिश्चित करता है। NHRDF सलारू केंद्र के प्रमुख डॉक्टर आलोक सिंह ने बताया कि सर्दियों की फसल के लिए क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल उन्नत किस्मों एवं
प्रमाणित बीजों का ही चुनाव करें। लहसुन की अगेती बिजाई के लिए यमुना सफेद 1 जी 1, यमुना सफेद 2 जी 50, यमुना सफेद 3 जी 282, यमुना सफेद 4 जी 323 और यमुना पर्पल 10 जी 404 जैसी किस्में बेहतर मानी जाती हैं। इनके कंद ठोस, सफेद और बड़े आकार के होते हैं, जबकि यमुना पर्पल 10 का रंग पर्पल व धारी युक्त होता है, जिनकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। 2 से 3 बार खेत की जुताई कर गोबर की खाद डालें। लहसुन एक कंद वर्गीय फसल है, इसलिए मिट्टी का भुरभुरा और हवादार होना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले मिट्टी पलटने वाली हल से एक गहरी जुताई करें, जिससे पिछली फसल के अवशेष दब जाएं और जमीन की निचली परत खुल जाए। इसके बाद कल्टीवेटर एवं हैरो के माध्यम से 2 से 3 बार जुताई करके पाटा लगाएं, ताकि जमीन समतल हो जाए। इसके उपरांत रोटावेटर के माध्यम से मिट्टी को भुरभुरा कर लें। अंतिम जुताई के 15 से 20 दिन पहले प्रति एकड़ 8 से 10 टन अच्छी तरह गोबर की खाद या 2 से 3 टन वर्मी कंपोस्ट खेत के समान रूप से बिखेर कर मिला दें। जमीन में जल निकासी का अवशेष ध्यान रखें। खेत में जल भराव के कारण मिट्टी सख्त हो जाती है, इससे कंद के विकास में अवरोध होता है। रोपाई की उचित विधि। समतल खेत में 15 सेंटीमीटर ऊंची और उचित चौड़ाई की मेड़े राइज्ड बेड तैयार करें। लहसुन की कलियों को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर और 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाना चाहिए, जिससे कंधों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिले। खाद एवं उर्वरक। फसल के लिए खाद की उचित मात्रा के रूप में नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम एवं पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। अच्छी पैदावार के लिए खड़ी फसल में बुवाई के 30, 45 एवं 60 दिनों के बाद 1% 19:19:19 पॉलीफीड 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर एवं 75, 90 व 105 दिन के बाद 2% मल्टी के नामक फोलियर फर्टिलाइजर का उपयोग जरूर करें। 74 की उम्र में भी खेती का जज्बा। 14 एकड़ में बागवानी व 19 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे बाग से ही फल ले रहे खरीदार। 33 एकड़ में बिना रासायनिक खाद के खेती कर रहे आरएस चौहान। राजस्थान सीमा से सट्टे खंड के गांव काटी में 2015 में 74 वर्षीय पूर्व डीआरजी आरएस चौहान ने सेवानिवृत्ति के बाद प्राकृतिक खेती शुरू की। आज उन्होंने 33 एकड़ भूमि को पूरी तरह प्राकृतिक खेती और बागवानी का मॉडल बना दिया है। इसमें 14 एकड़ में बागवानी और 19 एकड़ में सरसों, चना व बाजरे की खेती की जा रही है। खास बात यह है कि खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता, जिससे उपज खरीदने के लिए हरियाणा और राजस्थान से खरीदार सीधे खेत तक पहुंचते हैं। खेत में भूमिगत जल काफी गहराई पर है और पानी की उपलब्धता सीमित है। ऐसे में उन्होंने अधिक पानी मांगने वाली फसलों के बजाय कम पानी में तैयार होने वाली फसलों और फलदार पौधों को प्राथमिकता दी। बागवानी में 4 एकड़ में एप्पल, बेर, 2 एकड़ में अमरूद और 1-1 एकड़ में जामुन और बेल के पौधे लगाए हैं। सीधे खरीदार आने से उपज को बिचौलियों के बजाय सीधे बाजार तक पहुंचने में मदद मिलती है। पूर्व डीआरजी चौहान के अनुसार प्राकृतिक खेती और बागवानी व्यावसायिक रूप से लाभकारी साबित हो रही है और इससे रासायनिक खाद पर होने वाला खर्चा भी बचता है। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है
तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। तब तक के लिए आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857 वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में होगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाए।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हो तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए लाया हूँ सूत्र जीवन के, और हम आशा करते हैं कि आपके जीवन को हम सुगम बना सकें। मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त विशाल शर्मा।

अगर किताब पढ़ने के लिए कहा जाए तो 10 मिनट के अंदर ही उसको नींद आने लगती है, जबकि उसको पता है कि इस किताब में जिंदगी में सफल होने के सूत्र हैं, और यह भी कि इस किताब को पढ़ने से उसको जिंदगी में सफल होने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन नहीं, किताब पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ जाएगी। इसलिए सफल होने के लिए आपको अपने साथ थोड़ा सा कठोर तो होना ही होगा, क्योंकि अगर आपको कुछ ऐसा हासिल करना है जो आज तक आपने नहीं किया, तो आपको कुछ ऐसे काम भी करने होंगे जो आपने आज तक नहीं किए। बस आज के लिए इतना ही, मिलता रहूंगा आपसे FM 90.0 पर, ताकि आपके दिल को छू सकूं। हमेशा खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054131010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर विदस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से।

0: इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अम्बाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अम्बालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें एक 63.5 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी, अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी ओर भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: जी, हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल्स में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, मींस कि अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक से, इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, इससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो उनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं, तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या और भी धमनियां जो है उनकी, जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं, और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं, वो हमारा मेन कारण होता है जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरिंग होती है, और एक मेन कारण जो है इनका नैरिंग होती है। और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये रफ इंटीमा जो है, जो ब्लड कवरिंग है, ब्लड वेसल की कवरिंग है, वो फटती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर प्लेटलेट्स डिपॉजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है, बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
1: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम्स नहीं होते।
0: जी।
1: तो अगर किसी चीज के सिम्टम्स, जैसे किसी को आर्थराइटिस है,
0: जी,
1: क्योंकि उसे दर्द होती है, वो मेडिसिन लेता रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है, उसको पेशाब ज्यादा आता है, रात रात को उठना पड़ता है, तो वो भी मेडिसिन की, वो भी दवाई लेता रहता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, वो थोड़े दिनों बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर होता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल में एनुरिज्म फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं, कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
0: क्या डॉक्टर साहब, जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
1: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है। जैसे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल फैटी फूड है उस पे कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें, और डेली एक्सरसाइज करें 4-6 किलोमीटर प्रतिदिन, एटलीस्ट 4-5 times अ डे वीक, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
0: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
1: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोमनिया कहते हैं, नींद कम आना या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सबसे एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये आमतौर पर उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मीन्स ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक अरेस्ट का भी खतरा होता है, और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी जिसकी भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और सारी चीजें जो है स्लीप डिस्टर्बेंस ये कंट्रीब्यूट कर सकते।
0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू
0: सो मच।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: Én hét talacsmél. Én hét letamangisker. Én hét rédió mitesztá. Hám szefer zindgí ká.
1: Otáj din na javáni nal csal dí.
0: 90.0 megahertz per. अंबाला केंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो।
3: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
4: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
3: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
4: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
3: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
5: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
6: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। प्रस्तुत है एक रेडियो रिपोर्ट, विषय है पुस्तक विमोचन, डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा द्वारा, किंग फिशर अंबाला कैंट में 20 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे से। जिन पुस्तकों का विमोचन हुआ वो है कवि हृदय और बहुवर्णी। ये दोनों काव्य संग्रह डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा द्वारा लिखे गए हैं। इस आयोजन में अंबाला के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में थे खेड़ा दंपति श्री प्रदीप खेड़ा और श्रीमती नीता खेड़ा। कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और समापन पर चाय नाश्ते का प्रबंध किया गया था। प्रस्तुत है विस्तृत रेडियो रिपोर्ट। मंच संचालन किया श्रीमती अंजलि सिफर ने, सहयोग किया डॉक्टर अनुपमा आर्या और डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने।
7: वाकई तो अनगिनत है मेरी जिंदगी के, सोच रहा हूँ किताब लिखूं या हिसाब लिखूं। तो हम में से बहुत से लोग हिसाब लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किताब लिखते हैं। उन्हीं में से एक डॉक्टर विनय मल्होत्रा, राजनीतिक शास्त्र की ज्ञाता, कवि बल्कि आशु कवि कहें तो बेहतर होगा, लेखक और अंबाला के जाने माने साहित्य एवं समाज सेवी द्वारा रचित पुस्तकें कवि हृदय एवं बहुवर्णी के विमोचन में मैं अंजलि सिफ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले दीप प्रज्वलन के लिए मैं चाहूंगी कि हमारे आज के अतिथिगण सामने आए। असतो मा सदगम्या, तमसो मा ज्योतिर्गम्या, मृत्योर मा अमृतम गम्या। हे ईश्वर, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर। ऐसी ही कामना करते हुए हम दीप प्रज्वलन कर माँ सरस्वती का आवाहन करते हैं।

0: डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा आयोजन के बारे में बताते हुए।
1: काज विमोचन है उसकी बुक रिलीजिंग सेरेमनी है, पुस्तक विमोचन। ये पोइट्री के ऊपर है, मेरी कविताओं का संग्रह है और ये रिटायरमेंट के बाद मेरा छठा काव्य संग्रह है जो मैंने लिखा है। और इसमें कवि हृदय को डिफाइन किया है, कवि दृष्टि को डिफाइन किया है पोएटिक फॉर्म में। और इसमें कई प्रकार की कविताएं हैं, राजनीतिक नेताओं पर है जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है, गीत है उनके ऊपर, हिमालय के कई व्यक्तियों के ऊपर कविताएं हैं, स्वर्गीय यश पाल दास जी के ऊपर कविता गीत है, प्रोफेसर इकबाल सिंह चौहान जी के ऊपर इसमें एक कविता है, और कई सामाजिक आर्थिक प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे रिलेटेड कई पोएम्स हैं।
2: मतलब कि आपने टोटली सारा ही निचोड़ जो है वो इस बुक में दे दिया। तो इसमें मल्होत्रा जी, प्रधानमंत्री जी के बारे में हमने जो कविता लिखी उसकी कुछ लाइनें बताएंगे।
1: बाहर मोदी के काम हुआ, कुछ तारीफ करें कुछ सराहें, बाहर मोदी काम वा।
2: और सर ऐसा है कि इतना व्यस्त होने के बावजूद आपको इतना टाइम मिल जाता है?
1: ये टाइम निकालने पे सब कुछ निकल जाता है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद टाइम ही टाइम है। तो इसलिए मेरे को टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, और मैं सारा दिन जब तक कुछ ना रोज लिख ना लूं, चाहे अखबार के लिए कोई लेख लिखूं, कविता लिखूं, गीत लिखूं, या किसी पुस्तक के लिए अध्याय ना लिख लूं, मुझे चैन ही नहीं आता।
2: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर अनुपमा आर्या ने सभी आमंत्रित लोगों का स्वागत और अभिनंदन किया।
3: तो मैं आगे डॉक्टर अनुपमा आर्या जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे बीच मौजूद अजीज मेहमानों का स्वागत करें।
4: नमस्कार। आज की शाम बहुत खास है, और खास इसलिए है कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे हरदिल अजीज डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी, जिनकी साहित्यिक यात्रा के सुंदर पड़ाव के साक्षी बनने के लिए। ये मात्र उनकी तीसवीं पुस्तक नहीं है कवि हृदय या बहुवर्णी, उसका लोकार्पण नहीं है, सिर्फ एक किताब का विमोचन भी नहीं है, बल्कि मैं अगर सच्चे दिल से कहूं तो ये उनके वर्षों की लंबी साधना, संवेदना और सृजन का उत्सव है। ये उत्सव है सोच का, शब्दों का, समाज के प्रति दायित्व का, उनकी साहित्य की खुशबू का। और हम सब ये मानते हैं कि कुछ रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, उपस्थिति से पहचाने जाते हैं, और आज आप सब यहाँ उनके एक बुलावे पे उपस्थित हो और एक इस शाम को एक यादगार शाम बनाने के लिए आप सभी का इस आत्मीय अवसर पर पधारने से हमारी खुशी और सम्मान दोनों बड़े हैं। स्वागत के ये अल्फाज चाहे मेरे हैं, पर इसके पीछे भाव, इसके पीछे सोच, इसके पीछे जो वानगी है वो डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी और डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी की है। कुछ मुलाकातें, जैसे मैंने कहा, महज मुलाकातें नहीं होती, दिल में उतर जाती हैं और एक खूबसूरत, ना भूलने वाली, एक यादगार शाम बन जाती हैं। तो आज क्योंकि मुझे आदेश हुआ है सभी का, अपनों का स्वागत करने के लिए, आज के इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि खेड़ा दंपति अपनी मुस्कान, अपनी सौम्य छवि, अपनी आत्मीयता से अपनी पहचान बनाते नीता खेड़ा जी, प्रदीप खेड़ा जी, न जाने कौन सी दौलत है इनके शब्दों में, बात करते हैं दिल ही खरीद लेते हैं। हरियाणा सरकार में बहुत से विभागों पर अपना लोहा मनवाती, बड़ी, मैंने जैसे कहा, बड़ी सौम्य छवि मिसेस अनीता खेड़ा जी। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी की तरफ से। मैं स्वागतार्थी हूँ गेस्ट ऑफ ऑनर रोटेरियन नरेश भारद्वाज जी का, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी क्लब। बड़े आदर और सम्मान के साथ अपने बड़े भाई का स्वागत करती हूँ। और नरेश जी, जब फोन पे विनय जी ने मुझे बताया कि आपको पता है कि वो डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो इनका जो कहने का अंदाज था वो ऐसे था, बड़ा गर्व वाला था कि मेरा भाई तो बहुत अंबाला का हर व्यक्ति आपसे परिचित है और मैं सदियों से परिचित हूँ क्योंकि मैं आपकी छोटी बहन, और आपका बहुत स्वागत दिल की गहराइयों से आपका यहाँ पहुंचने पर स्वागत, हमारा ये स्वागत अभिनंदन स्वीकारें। डॉक्टर विवेक मल्होत्रा जी, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ अंबाला, हमारे लिए बड़े गौरव और गर्व का विषय के विरसे में संस्कार और सादगी लिए डॉक्टर मल्होत्रा। मैं अक्सर इनको कहा करती हूँ, लगातार 3 पीढ़ियों से चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और अब हम और सौभाग्यशाली हैं कि हमारा बेटा जो है वो भी इसी लाइन में आ गया और चौथी पीढ़ी भी इस सेवा के लिए समर्पित होने जा रही है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। स्वागत है डॉक्टर आर.आर. सूरी, सचिव रोटरी क्लब ऑफ अंबाला। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं वरन डीएवी संस्थाओं में मनोरभव की जो शिक्षा आप दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है डॉक्टर साहब, और आपका जो असाधारण व्यक्तित्व है आपका सादर अभिनंदन है, अभिवादन है। अभिवादन है सुभाष बंसल जी, रोटेरियन। लेकिन मैं अक्सर एक बात कहा करती हूँ, कई सितारों को मैं जानती हूँ बचपन से। डॉक्टर सुभाष जी रोटरी की पहचान है, दिल में स्नेह का स्पर्श लिए हैं, कलम और जंग अनेक अनकहे अफसाने इनकी जबान पर हैं। सुभाष जी बहुत स्वागत है, और ये स्वागत डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी चाहते थे कि एक एक का नाम लेकर स्वागत किया जाए, तो मैं उसी आदेश की पालना करते हुए बीच में अपनी बात इसलिए जोड़ रही हूँ कि आप सब मेरे दिल के बहुत करीब लोग जो यहाँ आमंत्रित हैं। अजय गुप्ता जी बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है मल्होत्रा दंपति की ओर से। आप रोटरी का एक ऐसा चेहरा जो बड़ा सजग, बड़ा हसमुख, हर दिल अजीज हैं आप, और जब कहीं मैं देखूं किसी भी गैदरिंग में आपका परिचय किसी शब्दों का मोहताज नहीं है, क्योंकि रोटरी की आपने लगातार बहुत सेवा की है, तो बहुत स्वागत आपका, बहुत अभिनंदन। मिसेस मंजू दास जी बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन है। एक ऐसी सौम्य छवि है, हमारे वेदों में कहा गया कि 2 हाथ से कमाओ और 100 हाथ से दान करो, और ऐसा दान जो किसी को पता भी ना लगे। तो आपका परिवार जो है एक ऐसा नामी परिवार है अंबाला का, जैसे मैंने अभी कहा कि कोई कई परिवार ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, कई शख्सियत ऐसी होती हैं जिनके बारे में अल्फाज कम होते हैं। तो मंजू जी बहुत स्वागत, दिल की गहराइयों से बहुत स्वागत है। डॉक्टर आईएस चौहान जी मुझे नजर आ रहे हैं मेरे, मैं डॉक्टर साहब अगर आप जानते हो आपके सब्जेक्ट की, और आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा जब मेरी नौकरी की शुरुआत हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा विनय जी ने कहा कि डॉक्टर आईएस चौहान जी आएंगे, तो आपको ध्यान होगा ड्यूटीज के दौरान आपने मुझे ड्यूटी करना सिखाया था। बहुत स्वागत है, और दिल की गहराइयों से विनय मल्होत्रा जी की तरफ से स्वागत है। मुझे जय कुमार जी नजर आ रहे हैं, जय कुमार जी बहुत स्वागत। जब अपनों का स्वागत अपने करते हैं तो बात कुछ और होती है, और जब आप फूल बांटने वाले के साथ खड़े हैं तो खुशबू उनके हाथ में तो है, पर आपके हाथ में भी वो सुगंधी आती है, क्योंकि आपने, मुझे ये लगता है कि विनय मल्होत्रा जी का कोई भी प्रोजेक्ट है, जय कुमार जी आपके बिना वो अधूरा रहता है। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत। नेहा परवीन मुझे नजर आ रही है, समाज सेविका है, इंद्रेश ग्रुप से आप संबंध रखती हैं, और बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं आपके ग्रुप में, मैं भी जुड़ी हुई हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि अंबाला में इतने छोटे बच्चे, ये जनरेशन जो है इस तरह की समाज सेवा की काम जो है वो करती है। भारत सपोरी जी, डायरेक्टर रेडियो विदस्ता 90.0 FM, और मैंने अभी इनको कहा कि बहुत अच्छा लगता है अंबाला का इकलौता रेडियो स्टेशन जिसमें कि विनय मल्होत्रा जी बहुत बार गए, मैंने इनकी इंटरव्यूज भी सुनी। बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है आपका। इसमें हरीश दत्ता जी भी हैं, राहुल डारूवराब जी भी हैं, रेखा गुप्ता जी भी आने वाली हैं, और जो जो लोग मैं, जो नाम मैं नहीं ले पाई वो शायद मेरी कमी रह गई होगी, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे पूरी लिस्ट दी थी और बड़ा इंश्योर किया था कि ये नाम जरूर बोलने हैं। तो डॉक्टर साहब आपका जो भाव था वो सब तक पहुंच गया है, और अंजलि सिफर जो अभी मंच पर आएंगी, और अभी आई भी थी, और अक्सर मैं इनके बारे में कहती हूँ कारीगर हूँ, शब्दों की मिट्टी से महफिल सजाती हूँ और सिफर हूँ, सिफर किसी के साथ बढ़ मिलके उसका भाव बढ़ा देती हूँ, सिफर सिफर हूँ। तो अंजलि जी अभी हम आपको सुनेंगे और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आगे चलेगा। मैं बहुत स्वागत करती हूँ, बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ अभय कुमार अरोड़ा जी जो हमारे दामाद हैं, बेटी सोनाली मल्होत्रा वामिका, क्योंकि ये माहौल जो डॉक्टर साहब को मिला है ये आपकी वजह से मिला है। मैं अक्सर कहती हूँ जिंदगी के जिस पड़ाव पर हम खड़े हैं उसमें अक्सर फिसलकर उम्र के फर्श पर उम्र ढल जाती है, कई बार बिना जिए भी जिंदगी गुजर जाती है, कई बार बिना जिए भी जिंदगी गुजर जाती है। बनमाली जी बहुत स्वागत है, मैं मेरी आंखें आपको ही देख रही थी, रचना बनमाली और ओम बनमाली जी बहुत स्वागत है मैडम आपका। बीडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल हैं आप और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इनर व्हील के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके स्कूल में होते हैं। आपका डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी की तरफ से बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। ओपी बनवाली जी की मैं बात कर रही थी, ओपी बनवाली जी जो आप मेरे लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं वही आदर और सम्मान के साथ आपको वापस लौटा रही हूँ। शब्दों के साधक हैं आप और अनेक पुस्तकों पर इनके हस्ताक्षर हैं। इनकी लेखनी केवल शब्दों को पिरोती नहीं है बल्कि संवेदना और चिंतन को एक साथ बुनती है। और आप साहित्यिक यात्रा में डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी का अभिनंदन स्वीकार करें क्योंकि आप उनके साहित्यिक यात्रा के बहुत लंबे साथी हैं। बहुत आपका साधुवाद यहाँ आने के लिए डॉक्टर साहब। मैं आपके लिए यही हमारी सबकी तरफ से एक दुआ करूंगी कि आपकी किताबों में जो अभी अंजलि जी पढ़ रही थी एक सोच की खुशबू है जो आप किताबें, जो तीसवीं किताब मैंने अभी कहा कि लोकार्पण नहीं, ये तो एक उत्सव है, हर पन्ने पर जिंदगी के रंग हैं, शब्दों में बसती आपकी गहरी समझ है, मानो हर पंक्ति एक नया सबक दे रही है। क्योंकि वरना जिस उम्र के ढलान पर हम बैठे हैं ऐसे लगता है कई बार बिना जिंदगी जिए जिंदगी गुजर जाती है, पर आपके साथ रहकर जिंदगी का हर क्षण बहुत रंगीन हो जाता है। बहुत बहुत अभिनंदन सबका, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: बहुत शुक्रिया अनुपमा मैम।
0: श्री ओपी बनवाली जी ने पुस्तक कवि हृदय की समीक्षा की।
3: विनय सर की जो आज पहली पुस्तक कवि हृदय उसकी समीक्षा हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी ओम प्रकाश बनमाली जी को, जो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जिनके लफ्ज अपने आप कविता का रूप ले लेते हैं, कविता का पैकर ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत ओम प्रकाश बनमाली।
5: धन्यवाद। मंच में विराजमान आज के अतिथि खेड़ा युगल रोटेरियन भारद्वाज जी, प्रोफेसर वीर सेन विनय मल्होत्रा ट्रस्ट के प्रधान सर्वे सर्वा रोटेरियन डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी, रोटेरियन नीना मल्होत्रा जी, मंच संचालिका अंजलि और मेरे समक्ष उपस्थित सभी कला प्रेमी सुदीजन, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। पुस्तक और उसका रचनाकार मैं समझता हूं उसमें वो संबंध है जो माँ और संतान में होता है। रचनाकार उस शाब्दिक भावनात्मक परस्व वेदना से गुजरता है जब वो रचना कर रहा होता है। विनय मल्होत्रा जी कि ये पुस्तक मुझे कहा गया कि मैं इसकी समीक्षा करूं, तो समीक्षा अपने आप में विशद विषय है, लेकिन इसके जो कुछ पक्ष मेरे सामने आए हैं वो मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। कोई भी पुस्तक जब मंजरे आम होती है तो उसको कई कसौटियों पर कसा जाता है, लेकिन ये वो कवि है जो समाज में रहता है, जिसका दिल धड़कता है और इस किताब के मुख पृष्ठ पर भी कवि के हृदय में दिल के धड़कन जो है वो स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है कि वो धड़क रही है या नहीं धड़क रही है। वो किताब के पन्ने पलटेंगे तो हर शब्द में वो धड़कन आपको सुनाई देगी। लोक हिताय इसलिए भी कि वो अलमारी में बंद नहीं रही, किसी किताब में बंद नहीं रही, किसी पन्नों में बंद नहीं रही, वो आपसे साझा की जाती रही, चाहे वो रोटरी का कोई मंच हो, चाहे रेडियो वेदस्ता का उद्घाटन हो या अपने मित्र के साथ। एक इसमें कविता है, तीन मित्रों के बारे में एक कविता है, बिल्कुल 5-7 पंक्तियां हैं, उसको मैं त्रिवेणी कहूंगा। तो लोक हिताय है, मंजरे आम है, लोकार्पण हो रहा है, क्यों जनता से जुड़े हैं, लोक मंगल की कामना की जा रही है। लोक मंगल में निज हित तो है ही, आत्म आनंद तो है ही, उत्प्राप्ति हो ही रही है, लेकिन जन मानस में समाज में बेहतरी के लिए, लोक मंगल के लिए, सबके कल्याणार्थ जो रास्ता दिखाने का उद्देश्य है छप रही है, तो निश्चित रूप से समाज से जुड़ने के कारण ही छप रही है, पाठक के साथ जुड़ने के कारण ही छप रही है, तो लोक हित का जो कसौटी है उसपे खरी उतरती। दूसरी बात, छप रही है तो किन लोगों के बारे में बात की जा रही है, पात्र कौन है इसके, क्या ये वर्तमान समाज का या अतीत के समाज का या आने वाले समाज का दर्पण है कि नहीं। समाज में जो कुछ घटित हो रहा है साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है, इसके ऊपर वो खड़ी उतरती है कि नहीं। आप इसका कोई भी पन्ना पलटेंगे, कोई भी कविता देखेंगे, तो उसमें जो वर्णन मिलेगा, जो पात्र मिलेगा, वो आज के समाज की हकीकत है, यथार्थ है, वास्तविकता है। उसमें बहु रंग है, कड़वाहट भी है, मिठास भी है, प्रेम भी है, हमारी विषमताएं भी, हमारी कमजोरियां भी हैं। तो समाज का चित्रण करती साहित्य माध्यम है समाज का, वो दर्पण है। क्या उस दर्पण पर वो खरी उतरती है, क्या उन लोगों के बारे में बात है जो हमारे सामने ही नहीं है। तो इसमें एक कविता थीम पे है, कवि हृदय। तीन भाषाएं हैं, देवनागरी में पंजाबी भी है, पंजाबी में भी बहुत खूबसूरत इन्होंने कविताएं लिखी हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम हैं वहां हिंदी पंजाबी में विभाजन रेखा बहुत कम है, बहुत थोड़ी है, कोई भी कुछ भी समझ लेता है। तो सहजता सरलता भी एक शर्त है जो इन्होंने खरी उतरी है। कहीं इन्होंने विकास की तारीफ भी की है, तो कहीं बाढ़ों के कारण शहर के सत्यानाश होने के लिए भी वो संकोच नहीं किए हैं, पक्षपाती नहीं है, आलोचना भी की है, स्वच्छ आलोचना की है, ताकि सरकार की आंख खुले। उसी सरकार को इन्होंने सत्कारा भी है, जम के सत्कारा है। तो दोनों स्थितियां हैं, क्योंकि एक पक्ष होता तो मुझे दिक्कत होती, लेकिन मैं धड़ल्ले से कह सकता हूं कि जिन नेताओं का ये वंदन करते हैं उनकी आलोचना भी करने में संकोच नहीं करते हैं, इस बात के हम गवाह हैं, हमने देखा है। मेरी दृष्टि में उस हिसाब से किताब बहुत सफल है।
0: श्री सुभाष बंसल जी ने पुस्तक बहुवर्णी की समीक्षा की।
3: तो आज इनकी एक नहीं बल्कि दो पुस्तकों का विमोचन है, तो इनकी दूसरी पुस्तक का परिचय देने के लिए मैं आवाज देना चाहूंगी सुभाष बंसल जी को, जो कि लेखकों और कवियों के अल्फाज को उनका घर देते हैं, अल्फाज का घर यानी पुस्तक। तो वे स्वयं लेखक हैं, संपादक हैं, प्रकाशक हैं, जो कि अल्फाज को घर देने का काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सुभाष बंसल सर।
6: लेखक, कवि, गायक, समाज सेवी, प्राचार्य एवं शिक्षाविद डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा, PhD, MA गोल्ड मेडलिस्ट का अध्यापन प्रेम जग विदित है। अनुशासन प्रिय, मिलनसार, कुशल वार्ताकार, उत्साही स्वभाव आदि गुण इनके ऐसा बनने में सहायक हुए हैं। हम भी चाहेंगे ये गुण हमने आए। पढ़ना लिखना और समाज सेवा इनके नित्य कर्म का महत्वपूर्ण अंग है, आज भी जारी है। वो अध्ययन, अध्यापन तथा शोध के सिलसिले में इन्होंने 12 यूरोपीय तथा उत्तरी अमेरिकी देशों का भ्रमण किया। ये अनेक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के मानद सदस्य हैं, रोटरी क्लब ऑफ अंबाला के पूर्व प्रधान तथा BBM ट्रस्ट के प्रधान हैं। बहुवर्णी नाम की इस पुस्तक को साहित्य कलश पब्लिकेशन पटियाला ने अत्यंत सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रकाशित किया है। 100 पृष्ठों के काव्य संग्रह का मूल्य मात्र 250 रुपए रखा गया है। अनुक्रम प्रस्तावना के अतिरिक्त शेष पाठ्य सामग्री को 9 भागों में विभाजित किया गया है। 61 कविताएं हैं। ये गेय कविताएं सरल हिंदी व पंजाबी भाषा में लिखी गई है। इन कविताओं के विषय आम जीवन से लिए गए हैं। पहला भाग व्यक्तित्व नाम से है। इसमें समाज सेवी श्रीमती प्रोमिल चावला, राजनीतिज्ञ एवं मंत्री श्री अनिल विज, प्रोफेसर वी सेन, श्री वाई पी दास, श्री जसवीर जस्सी, श्री सुभाष बंसल, श्री उदय ठाकुर, सुश्री नेहा प्रवीण, माता श्रीमती स्वर्ण तथा दोहती कुमारी गुरमेयर तथा प्रोफेसर इकबाल सिंह चौहान शामिल हैं। इन सभी कविताओं में व्यक्ति विशेष के गुणों, उनकी चारित्रिक विशेषताओं, उनके दैनिक व्यवहार को उजागर करती भाव भंगिमाओं, उनके वैयक्तिक पारिवारिक व सामाजिक सरोकार आदि को इंगित करते संकेत अत्यंत कुशलता व करीने से पिरोए गए हैं। एक उदाहरण हरियाणा सरकार में मंत्री श्री अनिल विज का देखिए। कोई भी विकास कार्य इसने ना छोड़ा, अपराधी माफिया ने हरियाणा छोड़ा। चौकीदार बन सदर बाजार में बैठता, आम लोगों के साथ चाय पीता, शनि दरबार में शिकायतें सुनता, तभी तो अनिल विज हर दिल में बसता। सबको पता है जो इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया। विनय जी लेखक के साथ साथ संगीतकार और गायक भी है। ये तुकांत हर तुकांत हर प्रकार की लाइनों को खूबसूरती से लय में गा लेते हैं। यदि सांस लय हो तो मेज हथेली और उंगलियों से उसकी कमी पूरी कर लेते हैं, पर अपनी बात प्रभावी ढंग से कहे बगैर नहीं छोड़ते। पुस्तक का भाग 3 जो देश राजनीति पर है, उसमें एक ओजस्वी कविता प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के कार्यों और उपलब्धियों पर भी है। भाग 5 में रोटरी एवं रोटेरियंस के अंतर्गत रोटेरियन नरेश ढींगरा और रोटेरियन दिनेश सेठी पर भी अति सुंदर कविता है। इसी प्रकार अपने पिता स्वर्गीय प्रोफेसर वीर सेन जी को याद करते हुए कहते हैं, गाना आपको याद आ जाएगा, कभी हम आपसे पढ़ते थे एसडी कॉलेज की क्लासों में। याद आया गाना? कभी हम आपसे पढ़ते थे एसडी कॉलेज की क्लासों में, भरे होते थे हंसी मजाक आपके लेक्चरों में, पढ़ाते थे जो इकोनॉमिक्स वो छात्र याद करते। आ गया गाना याद बेदर्दी बालवा। इसी तरह एक कविता शिकंजवी और शराब में मुकाबले पर है। वो कविता तो बहुत आप लंबी है और पढ़कर के देखें, कहां तक गिनाऊं, एक से एक कविताएं हैं। एक शेर याद आ रहा है, खुश्क बातों में कहां है शेख कैफ़े जिंदगी, खुश्क बातों में कहां है शेख कैफ़े जिंदगी, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मजा पीने में है, वो तो पीकर ही मिलेगा जो मजा पीने में है। अगर किताब का वास्तव में आनंद लेना है तो किताब खरीद कर आराम से पढ़े।
0: डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा ने अपने अलग अंदाज और तरन्नुम में प्रस्तुत की कुछ कविताएं जो इन दोनों पुस्तकों में लिखी गई हैं। हम गौरवान्वित हैं कि रेडियो वितस्ता को भी जगह मिली पुस्तक कवि हृदय में। प्रस्तुत है आयोजन के कुछ लम्हे और श्रीमती नीता खेड़ा का संबोधन।
1: आज के मुख्य अतिथि मिसेस नीता खेड़ा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हरियाणा, एंड मिस्टर प्रदीप खेड़ा, जिला संचालक आरएसएस और अंबाला के प्रतिष्ठित मेडिसिन्स के व्यापारी, विशिष्ट अतिथि रोटेरियन नरेश भारद्वाज, अंजलि सिफर जी, मैडम नीना मल्होत्रा तथा सभी अतिथिगण। मैं ना तो कोई कवि हूं, ना मेरा कोई महान कवि बनने का इरादा है, और ना ही मैंने कभी कविता लिखने की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग कहीं से ली है। जो मन में आया बस लिखता चला गया और ये इस तरह ही लिखी चली लिखते चले गए, गीत और कविताएं बनती चली गई और वो छपती चली गई। तो अधिकांश वही हैं जो यहाँ आज बैठे हुए हैं, तो उन पर जो है मैं आपको कुछ एक, सबसे पहले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन था 17 सितंबर को, और वो जन्मदिन अब हमने एक महीना मनाना है किसके रूप में, एक संकल्प और सुशासन, सेवा संकल्प और सुशासन मास के रूप में हमने मनाना है। तो पहली कविता जो है मैं उन्हीं पर आपको, गीत है वो उन्हीं पर सुनाता हूं। वह रे मोदी के काम वा, कुछ तारीफ करें कुछ सराहें वाह।

सारी पोयम नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ एक स्टांजा ही। मेक इन इंडिया इन का नारा, आत्मनिर्भर भारत बना सारा। मेक इन इंडिया इनका नारा, आत्मनिर्भर भारत बना सारा। कुछ हम भी तो साथ दें, हम काम अपने करते जाएं। वाह रे मोदी के काम वाह, कुछ तारीफ करें कुछ सराहें। वाह रे मोदी के काम वाह। क्या मैंने पूरी गीत नहीं सुनाया, सिर्फ एक स्टांजा सुनाया। हमारे शहर के बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे रोटेरियन, वाईपी दास जी, यश दास जी, मेट्रो मोटर्स वाले। अभी सुभाष बंसल जी का जन्मदिन था, उस पर भी मैंने उनकी एक कविता सुनाई थी उनके जन्मदिन पर। तो ये भी एक कविता मैंने उनके ऊपर लिखी थी 2021 में, जब उनका उपन्यास का विमोचन हुआ था। उनके उपन्यास का नाम था जीना या मरना है, यही था ना टाइटल, उसी पे मैंने कविता लिखी। बड़ी शॉर्ट सी कविता, एक मिनट सुने। जीना यहाँ, मरना यहाँ, सुख यहाँ, दुख यहाँ, खुशी यहाँ, गमी यहाँ, मौज यहाँ, रोग यहाँ, रोग यहाँ, इलाज यहाँ। किताबें यहाँ, पढ़ना यहाँ, पढ़ना यहाँ, सीखना यहाँ, सीखना यहाँ, अनुभव यहाँ, मुस्कुराना यहाँ, आंसू यहाँ, हंसना यहाँ, रोना यहाँ, बहार यहाँ, कैंसर यहाँ, कैंसर यहाँ, तीमारदार यहाँ, कैंसर यहाँ, रोटरी अस्पताल यहाँ, और हमने जाना कहाँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ। एक कविता मैंने लिखी, मैंने जैसे बता रहा था, हमारे प्रतिष्ठित नागरिक थे शहर के श्री यशपाल दास जी, मेट्रो मोटर जो रेलवे रोड पर है उनके स्वामी थे। ये कविता उन पर है इस पुस्तक में, बहुवर्णी गीत है ये। मैं उसका सिर्फ एक स्टांजा ही सुनाऊंगा। ये मैंने उनको ट्रिब्यूट दिया था जब उनकी डेथ के बाद, तब लिखी थी। नैनों से आंसू नहीं रुकते, हो गए सब हैरान। हो नैनों से आंसू नहीं रुकते, हो गए सब।

आज हमारे में एक बैठी है नेहा परवीनी, छोटी सी लड़की, एक मिनट खड़े होंगे आप देखिए। लेकिन जो जो इसके काम बहुत बड़े हैं, बड़े सोशल सर्विस रोटरी क्लब के काम, एक तरफ इस अकेली का काम है, एक तरफ इतना इसने सोशल सर्विस की है, तो इस पर भी मैंने कविता लिखी है इस पुस्तक में, उसका भी एक स्टांजा ही सुनाऊंगा। इसके कद पे ना जाना, इसकी उम्र पे ना जाना, इसके धन पे ना जाना, इसकी सादगी पे ना जाना, जाना तो जाना इसके कौशल पर जाना, जाना तो जाना इसके कामों पर जाना, जाना तो जाना इसकी भावनाओं पर जाना, जाना तो जाना इसकी सेवाओं पर जाना। अब हमारे प्रोफेसर इकबाल सिंह चौहान बैठे हैं, इनके साथ अपने जीएमएन कॉलेज में 29 साल मैंने काम किया, इनकी गाइडेंस में, इनके इनकी इनकी ब्लेसिंग्स के साथ, और वीके पुरी जी होते थे हमारे कलीग, वो भी इनके बहुत मित्र थे, तो इनके ऊपर भी एक पूरी कविता है पूरे पेज की, मैं उसका सिर्फ दो स्टांजा सुनाऊंगा। हाय रे इंसान की मजबूरियां, पास रहकर भी है कितनी दूरियां, रहते हम पास पास है लेकिन मिलना बड़ी देर बाद होता है। हाय रे इंसान की मजबूरियां, पास रहकर भी है दूरियां, दूरियां नहीं मिटा पाई है यारियां, जहां चाह वहां राह ने खत्म कर दी खवारियां। बनारसी दास स्कूल अंबाला का सबसे पुराना स्कूल है, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये हाई कोर्ट के जजेस, पुलिस के कमिश्नर, पुलिस के सॉरी सेनापति, वो सभी इसी स्कूल से निकले के गए हैं। तो इस स्कूल पर भी एक कविता मैंने लिखी थी, वो आप सुने। ये है अंबाले का सबसे पुराना और हेरिटेज स्कूल है। ना रहे वो राय बहादुर, ना रहे वो बनारसी दास, ना रही वो बातें, ना रहे वो हेडमास्टर। इनके कई हेडमास्टर बड़े पॉपुलर थे, अशवाजी आप उनका नाम लो एक दो दिन, हाँ सबसे ज्यादा तो वो उनका स्टूडेंट नाम लेते हैं, हाँ विशिष्ट जी भी थे, ठीक राइट, हुकमचंद जी का बड़ा नाम लोग स्टूडेंट लेते हैं। ना रहे वो राय बहादुर, ना रहे वो बनारसी दास, ना रही वो बातें, ना रहे वो हेडमास्टर, ना रहे वो मास्टर, ना रहे वो टीचर, बस रह गई है यादें, रह गई ये इमारत जो बन गई है मुसीबत। बस वाजपेयी जी के ऊपर और एक रेडियो वितस्ता पर है कविता, वो सुने, वो उसके डायरेक्टर बैठे हैं, उसपे मैंने दो तीन कविता लिखी है हिंदी में भी इंग्लिश में भी, रेडियो वितस्ता पर, मैं उसका भी एक स्टांजा सुनाऊंगा। बढ़िया बढ़िया रेडियो वितस्ता, बढ़िया बढ़िया रेडियो वितस्ता, रंग ये लाता, खुश ये करता, मनोरंजन

0: विदस्ता, बढ़िया बढ़िया रेडियो विदस्ता, मुझे सुबह सुबह भजनों के संग जगाता, मुझे सुबह सुबह भजनों के संग जगाता, कोई भी इसका प्रोग्राम मैं नहीं छोड़ता। कानों में लगाकर माइक्रोफोन रखता, टीवी को भुला देता, मैं सुनूं इसको रोज रोज रे, काहे तुम भी नहीं सुनते रोज रोज रे। बढ़िया बढ़िया रेडियो विदस्ता, तो ये रेडियो विदस्ता पर था।
1: स्वागत है उनका जो दिल के पास होते हैं। और नीता जी आइए और अपने कुछ शब्द हमारे आज के श्रोताओं के लिए कीजिए। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक कहूं, आर्किटेक्ट कहूं, या इस कार्यक्रम की जो आज की भावना है, जो आज का ये आयोजन है, उसके मूल तत्व तो कहूं, आदरणीय विनय मल्होत्रा जी और उनके सब काम में उनकी सहयोगी, उनकी अर्धांगिनी डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रदीप खेड़ा जी जिनकी अर्धांगिनी होने का सौभाग्य मुझे मिला हुआ है, नरेश भारद्वाज जी जो आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे, किसी कारणवश उन्हें जाना पड़ा, बहुत से सारे रोटेरियन भाई जो यहाँ उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत को सबसे पहले चार चांद लगाया अपने शब्दों से, मेरी वो सखी जब मैं कुछ नहीं थी, जब वो प्रधानाचार्य बनी, अध्यापिका थी, उसके बाद वो अब रिटायर्ड है, लेकिन हमारा वो सफर जब मैं एक बीजेपी के मेंबर के जैसे इस कॉलेज में जाती थी और आज तक, तब भी वो मेरी सखी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी, ऐसी डॉक्टर अनुपमा आर्य जी। इस पुस्तक जो इन्होंने, दो पुस्तकों का आज हम विमोचन कर रहे हैं, उस पे विस्तार से चर्चा करते हुए आदरणीय बनमाली जी जिनकी रचनाओं से हम कई बार हम रूबरू हुए विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों में, सौभाग्य की बात है कि उनकी धर्म पत्नी का नाम भी रचना है इनको बहुत बार, आज इन्होंने बहुत विस्तार से पुस्तक के बारे में हम सबको बताया, बहुत अच्छी तरह से उसको वर्णित किया। दूसरी पुस्तक का जो समीक्षा की है वो सुभाष बंसल जी ने, वो भी उन्होंने बड़े विस्तार से बहुत अच्छे से की। मेरा इतना सा कहना, छोटी सी बात आपके बीच में रखूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ आशीर्वाद वचन के लिए यहाँ बुलाया गया है, जो मुझे कहा गया था, आज किसी भी पुस्तक को हम सिर्फ कागज के पन्ने ना समझे, किसी भी पुस्तक को एक साधारण से कागज के पन्ने ना समझे, विद्या विनय देती है। हमारे साहित्यकार भी आज विनय के नाम से सुशोभित हैं, विद्या हमें विनय देती है, विनय से पात्रता आती है। तो ये जो शब्दों का समूह ये लोग पिरो के पुस्तक के रूप में हमारे सामने रखते हैं, समाज के लिए वो एक सिर्फ पुस्तक नहीं, सिर्फ कागज का संग्रह नहीं, कुछ शब्दों का संग्रह नहीं, ये कवियों का या किसी भी जो साहित्यकार का, वो उनकी कल्पना, उनके ज्ञान, उनकी दूरदर्शिता, उनके अनुभव, उन सब का एक प्रयोग करके वो शब्दों में पिरो के हम सबके ज्ञान वर्धन के लिए समाज को देते हैं। साहित्य का दीप सदैव प्रज्वलित रहे, आपकी कृतियां ज्ञान प्रेरणा एवं संवेदना के माध्यम से आप हम सब के लिए नई नई पुस्तकें, नई नई अपने एक्सपीरियंस इस समाज को देते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी, इतने खूबसूरत शब्द आपने हमारे लिए बोले और इतनी सुंदर शुभकामनाएं आपने दी, मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे लोग ही तो हैं हमारे प्रोग्राम की शान। तो आप थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि कवियों के बीच में बैठ के मेरी भी भाषा जो है वो कवि की तरफ, कविता की तरफ जानी शुरू हो गई है।
3: अंत में मुख्य अतिथि श्री प्रदीप खेड़ा का संबोधन।
4: आज के इस पुस्तक विमोचन के शुभ अवसर पर मंचा सिंह जो आज के सूत्रधार भी हैं, डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी, उनके साथ उनके जीवन में उनके दुख सुख के साथी डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी, हमारे जो आज के विशिष्ट अध्यक्ष रहे डॉक्टर नरेश भारद्वाज जी, और मेरे जीवन में मेरे दुख सुख के साथी श्रीमती नीता खेड़ा जी, और आज के इस सभागार में उपस्थित जो समाज का एक एलीट वर्ग है जो अपने आप में कई समूहों को रिप्रेजेंट करता है। दो तीन चार मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज का जो यह अवसर है केवल दो पुस्तकों के विमोचन का अवसर नहीं है, बल्कि शब्दों के उत्सव और भावनाओं के सम्मान का अवसर है। आज दो पुस्तकें सुंदर कृतियां जो कि डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी ने हमारे बीच में रखी, बहुवर्णी एवं कवि हृदय। बहुवर्णी अपने नाम में ही अनेक रंगों को समेटे हुए है। जीवन भी तो बहुवर्णी है, कहीं सुख का उजाला है, कहीं संघर्ष की तपेश है, तो कहीं रिश्तों की मिठास भी है, तो कहीं अनुभवों की कसक भी है। साहित्य इन सभी रंगों को शब्द देता है। मुझे विश्वास है कि जो यह बहुवर्णी पुस्तक है पाठकों के जीवन को इन्हीं अनेक रंगों से परिचित भी कराएगी। दूसरी जो सुंदर कृति है वो कवि हृदय है। कवि हृदय होना अपने आप में एक विशेष संवेदना है। कवि वह नहीं जो केवल सुंदर शब्द दे, कवि वह है जो दूसरों की पीड़ा को अपना समझे, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को महसूस करे और समाज के अनकहे शब्दों को वो शब्द दे सके। ये कहा भी गया है कि जब शब्द हृदय से निकलते हैं तो वो हृदय तक जाते हैं। ऐसा हमने महसूस भी किया है और आज भी हमने, हमारे से पहले चाहे मन संचालिका हो, चाहे जिन्होंने परिचय दिया, डॉक्टर अनुपमा आर्या ने, डॉक्टर विनय मल्होत्रा ने, सुभाष जी ने, सभी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो दिल को छू गए। लेकिन आज मैं एक बात, क्योंकि एजुकेशन से जुड़े हुए यहाँ पर लोग बैठे हैं, तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये कवि महान क्यों होते हैं। ये इसलिए कि जब लॉर्ड मैकाले 1834 में भारत में आए तो उन्होंने शिक्षा के माध्यम से, हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से हमारी संस्कृति को नष्ट करने की योजना बनाई, उस संस्कृति को अगर बचाने का कोई काम किया तो आप जैसे जो साहित्यकार हैं जिन्होंने कि इसको जीवित रखा, ना केवल सजोकर रखा बल्कि उसको आज के इस युग में दोबारा से प्रचलित किया, ये मुझे लगता है कि हमारे लिए भी गर्व की बात है कि अंबाला में ऐसे ऐसे लोग उपस्थित हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए केवल इतना कामना करूंगा कि जो बहुवर्णी और विविध रंगों से पाठकों के जीवन को समृद्ध करे और कवि हृदय जो है वो अपने संवेदनशील मनुष्यता के भाव को और गहरा करे। अंत में बस इतना ही कहूंगा, जहां शब्दों में संवेदना होती है वहां साहित्य जन्म लेता है, और जहां साहित्य जीवित रहता है वहां समाज की आत्मा जीवित रहती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर विनय मल्होत्रा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कामना करूंगा कि ये जो दोनों पुस्तकें हैं, जैसे इनकी पहले पुस्तकों ने समाज में अपना रंग जमाया, अपनी एक स्थान स्थापित किया, ये दोनों पुस्तकें भी ऐसे ही स्थापित करेंगी और आने वाले समय में 30 पुस्तकों के बाद भी ना जाने कितनी पुस्तकें हमने डॉक्टर साहब के जो है हाथों से जो लिखी हुई हैं, जो उन्होंने शब्दों को पिरोकर हमारे समक्ष रखा है, उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। एक बार दोबारा से डॉक्टर विनय मल्होत्रा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: रेडियो वितस्ता के फाउंडर डायरेक्टर भारत सुपोरी ने भी वितस्ता का अर्थ बताया।
5: इससे पहले कि हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़े, भारत सुपोरी जी से मैं विनती करती हूँ कि वो आकर दो शब्द कहें।
6: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मल्होत्रा जी और मेरे सभी दोस्त भी और मेरे जो बड़े हैं जिनसे मुझे आशीर्वाद हमेशा चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभारी हूँ और डॉक्टर मल्होत्रा जी का कि वो रेडियो विदस्ता को कहीं ना कहीं अपने मन के साथ रखते हैं। मैंने कई बार देखा है कि घर में रेडियो उनका जो है ऑन होता है और हमें सजेशन भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं, खास करके वह थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी जो थिएटर ग्रुप है अंबाला का पिछले एक दशक से ज्यादा का, वही संस्था रेडियो विदस्ता भी चलाती है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर हिंदी भाषा की बात हो रही है, मैं कश्मीर में जन्मा हूँ और उर्दू मैंने स्कूल में पढ़ी है, हिंदी मैंने घर में पढ़ी है, कई बार मेरा उच्चारण भी हिंदी में गलत होता है, बट आज भी हम 100% जो प्रसारण है वो हिंदी में करते हैं और हिंदी में ही बोलने की कोशिश करते हैं। और आप विश्वास करिए कि जो हिंदी पढ़े लिखे हैं शायद कई बार मैं उनकी जो गलती है वो सुधारता हूं, और खास करके उर्दू मैंने पढ़ी है तो जो उच्चारण सही होना चाहिए जैसे इजाजत होना चाहिए, तो मेरे थिएटर में मेरे रेडियो पर कोशिश यही होती है। आप सभी का प्यार हमें चाहिए जैसे डॉक्टर मल्होत्रा जी देते हैं, हमेशा सहयोग देते हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट से अगर देखेंगे थिएटर के लिए कोई ज्यादा सहयोग नहीं देते हैं, तो डॉक्टर मल्होत्रा जी हमें हमेशा आगे ले आते हैं। पिछले 36 वर्षों के विस्थापन में मैं यहाँ अंबाला में रह रहा हूँ। अंबाला मेरी कर्म भूमि है, जन्म भूमि कश्मीर की है, दोनों जगह से जुड़ा हूँ। हमारे रेडियो का विदस्ता जो नाम है बस वो बता दूंगा क्या है, कश्मीर में वेरी नाग एक जगह है जहां पर एक चश्मा है, बहुत बड़ा है, वो रिवर जहलिम का स्रोत है, उस स्रोत को हम कश्मीरी में व्यर्थ बोलते हैं। तो हमारा थिएटर ग्रुप व्यर्थ थिएटर एंड कल्चरल सोसाइटी अंबाला रजिस्टर्ड है और व्यर्थ को ही संस्कृत में वितस्ता बोलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो प्रवाह वितस्ता का सदियों से रहा है वही प्रवाह हमें अंबाला के लोगों का, अंबाला के जीवन का, अंबाला को विश्व पटल पर रखने का जो वितस्ता ने प्रण लिया है उसको हम जारी रखेंगे। आप सभी का सहयोग चाहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और रेडियो विदस्ता की ओर से आपको शुभकामनाएं। ऐसे ही आप रेडियो विदस्ता पर भी जरूर लिखें और एक मेरा सुझाव भी है मैडम नीना जी के लिए भी, आप जरूर कविता लिखें, हमें भाव पता चलेंगे कि जिंदगी का जो सफर है वो कैसा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
5: तो चलिए अब हम आप पहुंचे हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर। सफर खत्म हो जाता है मगर निशानियां बाकी रहती हैं, ये वो खामोश पन्ने हैं जिनमें सदियों की कहानियां बाकी रहती हैं।
3: ये था इस आयोजन पर एक रेडियो रिपोर्ट, रेडियो वितस्ता हमेशा आप सभी अंबाला वासियों को अवगत कराता रहेगा। दीजिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां

शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

दोचो बोजान एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रोजियो पनिन पसंदीदा बात।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: आना।
1: तुम जाओ, अंजू मैं यहीं ठहरता हूँ।
0: क्यों, उनकी चोरी की है जो सामने जाने से डरते हो?
1: आखिर इंसान ही तो हूँ मैं।
0: अच्छा तो चलो।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 15। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।

सभी सुनने वालों को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। पेश है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स, जहां हम लेकर आते हैं उन गीतों के महफिल जो दिल के काफी करीब है। आज के इस कार्यक्रम में पेश है कुछ रोमांटिक ड्यूट्स, वो गीत जो दो आवाजों में पिरोए गए और हर लफ्ज हर सुर में मोहब्बत की खुशबू है। तो चलिए आइए एक बार फिर चलते हैं उस जमाने में जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस भी किए जाते थे।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 15, रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशित एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की, जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसकी शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहां शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी, अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरे, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अम्बाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अम्बाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अम्बाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलज

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। यह उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पर गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडहरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहां है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

फिल्मी गीतों पर आधारित प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते। मैं तुझको कैसे समझाऊं, तू प्यार की बातें क्या जाने, तू झांक रही माजी में, ना देख उसे, ना देख उसे, आ तुझको सुनाऊं मैं कहानी तेरी, तू अपना फसाना क्या जाने।

होते तो शायद हमारी मंजिल का बंटवारा नहीं हो पाता और ये सफर हमारी खोई हुई पहचान को जिंदा रखता। लेकिन यह ना हो सका और सिमट गई हमारी ये छोटी सी दुनिया इस अंधेरे कोने में, जहां रोशनी का कोई नामो निशान तक

और आज की शब ये सितारे बिना चांद के तन्हाई महसूस कर रहे हैं। माना कि इस शब की खामोशी को चीरती हुई तुम्हारी दर्द भरी आवाज मुझे तुम्हारे पास पास होने का एहसास कराता है, पर क्या तुम हो मेरे हमनवा हमराज? शायद इस बात का अंदाजा लगाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि तुम अक्सर गुम हो जाते हो मेरी तन्हाइयों को चीर कर, और इस खाली शब के इन अंधेरों में मैं ढूंढता हूं चांद को जो आज

उस ओर तक जहां तुम मुझे तन्हा छोड़ गए थे। गरजे ये सफर आज भी मुझे मेरे हर उस बीते लम्हे को भुलाने का हौसला देता, मगर तुम्हारी मासूम बेबस अदाओं का एहसास कैसे भुला पाऊंगा, जबकि हमारे रिश्ते अब पिंजरों में कैद हैं। फिर भी उन रिश्तों की खुशबू हमारे दरमियान इन फासलों को कम करने में हमेशा मदद करती है।

क्यों न लड़खड़ाएं। इन अंधेरों में मैं तुम्हें संभाल लूं। दूर तक चले हम साथ साथ, उम्मीदों के चिराग रोशन करें, ताकि एक नई सुनहरी सुबह हमें अपनी बाहों में समेट ले। भूल जाए बीते मौसम की यादों को, जब तुम तन्हा थी और मैं भटकता मुसाफिर। क्यों ना इस मौसम में याद करें ढलती शामों को, सुरमई उजालों को, रात की नरम मिजाजी को, तुम्हारी मासूम अदाओं को। इस सफर में फिर से साथ साथ लड़खड़ाएं और दूर तक चले संभलते।

तुम्हारे मेरे दरमियान इन फासलों को नजदीकियों में तब्दील करने की कोशिश करें। फिर से इस खामोश पानी में पत्थर फेंके ताकि इन लहरों का मिलन साहिलों से हो। आओ इन बादलों को अपनी मुट्ठी में कैद करें और फिर से पहले ही की तरह बारिश में भीग जाए। मैं तुम्हारी हथेली में अपना अक्स ढूंढ लूं ताकि अपनी बिखरी सूरत संवार सकूं। आओ हम दोनों आज ये अहद करें कि नहीं बिछड़ेंगे फिर से कभी, और तुम्हारे मेरे दरमियान इन फासलों को

जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिछ गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते। जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर भटकते रहे।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाओं में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने दोस्त रमेश

सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा कि पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाह सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं, और आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जो हमें अपना फीडबैक भेजते हैं हमारे कार्यक्रमों के बारे में और सुझाव भी भेजते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 2 सेकंड। तो चलिए, आज की ये भावभीनी मुलाकात भी अब समापन की ओर बढ़ चली है। उम्मीद है इन लम्हों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपके दिन को थोड़ा और रोशन और खुशनुमा बना दिया होगा। आज का दिन हमारे जीवन में बहुत ही खास है। आज 4 अक्टूबर को हमारे छोटे सुपुत्र अखिलेश दास का जन्म हुआ था। आज हमने हर्षोल्लास के साथ उनका जन्म दिवस मनाया, और हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने भी आज इस दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। एक संदेश अखिलेश के नाम। प्यारे अखिलेश, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी और गर्व है। मम्मी और पापा आपसे बेहद प्यार करते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका हर दिन सफलता, अच्छी सेहत और ढेर सारी खुशियों से भरा रहे। आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते रहें। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद किरनी और भारत की ओर से, और साथ में बहुत सारा प्यार बड़े भाई भरतेश की ओर से। जन्मदिन की शुभकामनाएं हमारे प्यारे अखिलेश। कुछ पंक्तियां आपके लिए आज के इस शुभ दिवस पर, आपके इस जन्मदिन पर। पंक्तियां यूं है, जन्मदिन की शुभकामनाएं हमारे प्यारे अखिलेश, आपके जीवन में सदा रहे खुशियों का समावेश। भारत और किरनी का आशीर्वाद सदा रहे आपके साथ। भरतेश और वितस्ता का स्नेह भरा रहे हर कदम आपके साथ। सुनहरे सपने सच हों आपके, हर राह हो आसान। आपकी मुस्कान से रोशन रहे हमारा ये जहां। मम्मी पापा का प्यार और सफलता का मिले हर उपहार। जन्मदिन पर आपको हम सभी का ढेर सारा प्यार। अखिलेश, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। आप ऐसे ही हंसते खेलते गुनगुनाते रहें और अपने सपनों को पूरा करें। यह था शुभ संदेश अखिलेश के लिए, जो रेडियो वितस्ता की टीम के अंदर टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, और उनके सहयोग से जिस ऐप के माध्यम से आप रेडियो वितस्ता को पिछले 3 साल से सुन रहे हैं, उसके रचयिता है अखिलेश दास। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज बात करते हैं एक बेहद प्रेरणादायक विषय पर। आज का विषय है, साहसी वो चिंगारी है जो हर बड़े सपने को हकीकत में बदलती है। जीवन में हम अक्सर बड़े सपने तो देख लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम उठाने से डरते हैं। डर यही कि लोग क्या कहेंगे, डर ये कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग इस डर के बावजूद हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हैं, वही इतिहास रचते हैं। साहस का मतलब ये नहीं कि डर लगता ही नहीं है, बल्कि साहस का मतलब है कि डर के बावजूद सही दिशा में कदम बढ़ाना होता है। चाहे कोई नया व्यवसाय शुरू करना हो, कोई नई नौकरी शुरू करनी हो, कोई नया हुनर सीखना हो, या फिर किसी गलत बात के खिलाफ आवाज उठानी हो, हर बड़े बदलाव की शुरुआत साहस से ही होती है। जो व्यक्ति असफलता के डर से आगे बढ़ने से कतराता है, वो कभी अपनी असली क्षमता को नहीं जान पाता। जबकि जो साहस के साथ आगे बढ़ता है, चाहे नतीजा जो भी हो, वो हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखकर और मजबूत बन जाता है। दोस्तों, आइए हम सब अपने भीतर के डर को पहचाने
और उसके बावजूद साहस के साथ अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि जो हिम्मत करता है किस्मत उसी के साथ होती है, किस्मत उसी का साथ भी देती है। जी हाँ दोस्तों, यह था आज का विषय और अखिलेश के लिए शुभ संदेश, और समापन की ओर हम जा रहे हैं। हर दिन आपके लिए चार पंक्तियां लाता हूं, आज के लिए चार पंक्तियां आपके नाम यूं है। डर के आगे जीत है ये बात है पुरानी, डर के आगे जीत है ये बात है पुरानी, हिम्मत वालों की ही होती है असली कहानी। एक बार फिर पढ़ता हूं, डर के आगे जीत है ये बात है पुरानी, हिम्मत वालों की ही होती है असली कहानी। वितस्ता भी तो निकली थी एक छोटी सी धार से, वितस्ता भी तो निकली थी एक छोटी सी धार से, यह सिखाती है साहस से बनता है हर बड़ी निशानी, यही सिखाती है साहस से बनती है हर बड़ी निशानी। तो दोस्तों, ये थी आज की पंक्तियां, और जाते जाते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण। कल 5 अक्टूबर 2026 सोमवार को हफ्ते की शुरुआत के दिन जो कार्यक्रम हम लाए आपके लिए वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर, वंदे मातरम से हम करेंगे शुरुआत, लाएंगे आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे आप भक्ति संगीत, 7:05 पर होगा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कल होगा एपिसोड 3 गुड़गांव की आवाज की ओर से, यह कार्यक्रम आपके लिए प्रसारित होगा सुबह 7:05 पर। 8:30 सकारात्मक कहानियों का समय होता है एपिसोड 6, आप सुनेंगे जीने की राह होगी इस कहानी का शीर्षक, पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 होगा कार्यक्रम दोस्ती अनमोल एपिसोड 1, पेश करेंगे भारत सोपोरी, और 10:05 पर कार्यक्रम काव्य गोष्ठी हमारे साथ होंगी इंदु शर्मा। संगीत की सभा जारी रहेगी और 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल, और 7 बजे होगा कार्यक्रम सुनहरे पल। ये कार्यक्रम तैयार किया गया है आनंद बख्शी पर, पेश करेंगे आरजे किरनी, और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा, और कल की कड़ी है एक बातचीत राजेंद्र नाथ रहबर के साथ। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का, आशा करता हूं कि आपको कल के कार्यक्रम पसंद आएंगे। आप अपना फीडबैक हमारे स्टूडियो के नंबर 7056413010 पर भेजिए। नंबर एक बार फिर 7056413010। तो दोस्तों, बस आज का सफर यहीं तक, आज का ये वक्त आपके साथ बिताकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि यह बातचीत आपके भीतर नया साहस और नई हिम्मत भर गई होगी। ये हम लाइव सेशन यहां पर समाप्त करते हैं। अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत, आपसे लेता हूं विदा। FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर, तब तक के लिए शुभरात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।